मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर

0: नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं समूह स्वर में ये देशभक्तिपूर्ण रचना।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये देशभक्तिपूर्ण रचना। आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये हरि भजन। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

अभी आप सुन रही थी अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये कृष्ण भजन। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और कृष्ण भजन रविन्द्र जैन व साथियों के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे रविन्द्र जैन व साथियों के स्वर में ये कृष्ण भजन। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और भजन मनहर उदास के स्वर में।

0: वंदना कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी, विषय होगा जल संवर्धन। 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की 11वीं कड़ी, गायिका अनुराधा पौडवाल और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। 6:50 पर होगा चिंतन, फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:30 और रात 8:15 पर। सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे बुंदेली किस्सा कंडेल साहब, किस्साकार होंगे नारायण दास सोनी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज हम अनुप्रसारित करेंगे सुबह 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, दिन में 12 बजे और 2:30 पर आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, दिन में 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, सांध्यकालीन सभा में शाम 6 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही आज हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का भाग 1299 और रात 8 बजे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। सुबह 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम के कलाकार होंगे उमा शंकर पाठक। एक ही गायक कार्यक्रम में आप सुनेंगे उदित नारायण के गाये चंद फिल्मी गीत और ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 पर। 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे लोकराग, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे वीणा श्रीवास्तव के गाये बघेली लोकगीत। श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। दिन में 1 बजे महिलाएं सुनेंगी महिला कार्यक्रम में कहानी तुमने सही कहा, कहानीकार होंगे डॉक्टर शरद सिंह। इसके अलावा होगी सौंदर्य सलाह। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। इसके अलावा होगी रोजगार सूचना। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम के कलाकार होंगे देवी सिंह यादव। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा होगी भेंट वार्ता, प्रगतिशील कृषक अभिषेक रैगवार से बिरजू भैया की बातचीत। आज की सीख का विषय होगा जी को दूल्हा पांव पिया दे ओ की बारात छुटपुटैया। दिल्ली से आज हम अनुप्रसारित करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर आप सुनेंगे इनसाइट्स और दिल्ली से ही आज हम अनुप्रसारित करेंगे रात 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खेती किसानी, विषय है जल संवर्धन।
1: आज की खेती किसानी में पंचों हम ना तो कोनू उपज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, न कोनू फसल के कीट रोग के बारे में बता रहे हैं। आज हम एक ऐसी समस्या पे चर्चा कर रहे हैं जोन इस समय पे सबसे अधिक जरूरी है। अपनी खेती किसानी में पानी एक ऐसा तत्व है जिसके बिना ना तो बरसात में खेती हो सकता है, ना ठंडियन में हो सकता है और ना गर्मियन में हो सकता है। कहो जाए तो पानी खेती को आधार है, लेकिन आज की स्थिति में अगर अपन देखें तो सबसे अधिक कमी अगर कोई चीज की अपन का खेती में दिखात है तो वह है पानी की। पानी जो हमारी गलती से आज हमें कम पड़ रहा है, हमने लगातार

0: लगातार प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं उको अधाधुंध दोहन करो है, और आज उको परिणाम अपन खा जो देखने पड़ रहा है कि कहूं वर्षा होते तो इतनी भयानक होते कि ऊ पानी खा अपन रोक नहीं पाए थे, और कहूं वर्षा नहीं होते तो अपन एक एक बूंद पानी खा ललायित है। अब समस्या जा है कि हम कैसे पानी के भूजल स्तर खा बढ़ाएं। पानी के भूजल स्तर खा बढ़ावे की प्रक्रिया को नाम है जल संवर्धन। जल संवर्धन को सबसे अच्छा तरीका एक किसान होवे के नाते अपने लाए तो यही है कि अपन अपने खेतन की मेड़न खा ऊंचो करें, मेड़बंदी करें और कोशिश जा करें कि खेत को पानी खेतई में ससक जाए। इके अलावा जल संवर्धन की और भी कई विधियां हैं जोन खेत की स्थिति, किसान की माली हालत और उके पास उपलब्ध संसाधन देख के तैयार करी गई हैं। इनमें कछु विधियों को नाम अपन खा बता रहे हैं जे कछु विधियां हैं जोन खेती के कार्यन पे आधारित है, उचित फसलन को चयन करके भी है, वृक्षारोपण करके भी अपन जल संवर्धन कर सकते हैं, और कई प्रकार की संरचनाएं अपन अपने आसपास तैयार करके जल संरक्षण कर सकते हैं। अब बात अगर करें खेती के कौन कौन सी ऐसे काम हैं जिनके माध्यम से अपन भूमि के पानी को स्तर बढ़ा सकें, तो उनमें सबसे पहला तो अपन खान जो करने हैं कि गर्मी में अपने खेतन की गहरी जुताई करने हैं। इके संगे संगे अपन रासायनिक खाद के स्थान पे कार्बनिक, जैविक या गोबर की खाद को उपयोग करें जिसे अपने खेत की पानी सोखने की क्षमता को विकास होए। तीसरी बात अपन का ज्यादा ध्यान रखने है कि जब भी अपन अपने खेत की जुताई कराएं तो खेत को ढाल जोन तरपी होए उतरपी जुताई न करा के उकी उल्टी दिशा में खेत की जुताई कराएं जिसे पानी को भराव खेत में हो सके। अब आई बात उचित फसलन के चयन के माध्यम से। अगर अपन अपने खेत में चौड़ी पत्ती वाली फसलें लगाई थे तो उसे भी अपने खेत में पानी ज्यादा मात्रा में ससक सकत। इसके अलावा अगर सकरी पत्ती वाली फसलें अपन चुन रहे हैं तो उनकी बोनिंग अपन पास पास करें, खेत में अपन अंतर्वर्ती फसल पद्धति अपनाएं और ऊके संग संग उचित फसल चक्र भी अपन अपनाएं जिसमें उथली और गहरी जड़न वाली फसलें अपन एक के बाद एक लेवें। इसके अलावा वनस्पति खा अपन आच्छादित करें या वृक्षारोपण करें तो उस समय अपन का जो ध्यान रखने है कि घास अपन खाली भूमि में लगाएं, मेड़न के ऊपर भी घास लगाएं, मेड़े खाली और साफ न रखें, पट्टीदार अपन खेती करें, नालन के किनारे जो जमीन खाली पड़ी हो उते अपन हर हालत में वृक्षारोपण करें। इसके अलावा जो ध्यान रखें कि अपन स्टाफ डैम को निर्माण करें, बूरी बधान को निर्माण करें, खेतन में अपन छोटे छोटे डबरा डबरियां बना के पानी खा रोक सके। उके अलावा कछु चीजें और भी हैं जी को अपन का ध्यान रखने हैं। ये चीजें हैं, ढालू अगर जमीन है अपनी तो उमें एक निश्चित क्रम में अपन खंती को निर्माण करें जो देखने हैं अपन खा के अपने खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनी रहे, और इके संगे संगे अपने घर के आसपास या जहां से पानी बाहर फालतू बहत है उते पे सोखता गड्ढा बना के भी अपन फालतू बहत भय पानी खा धरती के अंदर पहुंचा सकते हैं। जीवन में पानी को बहुत महत्व है। अपन खा अंत में जो ध्यान रखने है कि रहीम ने एक दोहा में कहो है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम को जो दोहा अपने आप में जल संवर्धन के महत्व खा स्पष्ट कर देते है। यही से आज अबई अपन जो संकल्प ले कि ई बरसात में जो भी पानी बहे उखा हम फालतू बहन न देबी और कोनो न कोनो तरीका से उको जल संवर्धन कर भी और धरती के अंदर कम होते हुए पानी के स्तर खा बढ़ावे में अपनो प्रयास जारी रख भी।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी, विषय था जल संवर्धन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की 11वीं कड़ी। गायिका अनुराधा पौडवाल, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं, धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु,

वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज, सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की 11वीं कड़ी। गायिका अनुराधा पौडवाल थी, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
1: आज प्रायः देखा जा रहा है कि मनुष्य धन के पीछे समस्त कार्यों को छोड़कर सर्वोपरि मान बैठा है धन को। उसमें लालच बस धन कमाने की है और हवस इसी बात की हो गई है। चारों ओर उसे धन ही धन दिखाई दे रहा है। धन प्राप्त करना कोई बुरा कार्य नहीं है। बिना धन के भौतिक संसार में जीवन जीना दुभर है। मनुष्य की भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति धन से ही संभव है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के दौर में मोबाइल, टू व्हीलर भी मनुष्य की आवश्यकता में शामिल हो गए हैं। मनुष्य इन आवश्यकताओं के बावजूद भी अपने आप को यहाँ अधूरा समझ रहा है। वो संसार में एक दूसरे से धनवान बनने की लालसा लिए हुए है और इसी लालसा ने उसे धन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बना दिया है और दिन रात सुबह शाम केवल एक ही लक्ष्य उसके सामने है, धन कमाने का, और उसी में वो लगा हुआ है। गाँव में, शहर में, जिले में, राज्य में, देश में और विश्व में केवल धन में अग्रणी रहो। क्या ये संभव है? अगर संभव भी है तो क्या धन ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? जीवन में बच्चे, परिवार, माता पिता, समाज, राष्ट्र, ये सब बेकार है। केवल एक ही धुन सवार है, दौलत वाला व्यक्ति बनना है, जो सब लोगों पर अपना रौब एवं प्रभाव, अधिकार या सबको गुलाम बनाने की इच्छा के द्वारा विश्व में अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि असली वास्तविक धन उसके बच्चे ही हैं, जिनके लिए उसे

0: कायम नहीं है। बच्चे ही उस ईश्वर की अनुपम भेंट है जो माता पिता को प्राप्त है। बच्चों को समय न देकर प्रायः देखा जा रहा है कि झूठा दिखावा, लालच, ईर्ष्या, जुआ, सट्टा और समय के प्रबंधन के कारण वो असली वास्तविक धन से वंचित हो रहा है। बचपन में बालक एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि मिट्टी के इस खिलौने को आप देवता या राक्षस की मूर्ति क्या बना सकते हैं। आप भी एक मूर्तिकार हैं जो इस समाज रूपी संसार के लिए बालक रूपी मूर्ति को परिष्कृत कर देवता या राक्षस बना सकते हैं। वो नन्हा सा बालक सही रास्ता या सही संस्कार पा गया तो वो स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, शिवाजी, अब्दुल कलाम भी बन सकता है। अगर वो दैवी गुण प्राप्त न कर आसुरीय गुण प्राप्त कर गया तो वो समाज के ताने बाने को प्रभावित कर देगा, जो एक चोर, डकैत, आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी बनकर पूरे समाज के लिए दुखदायी बन जाएगा और समाज में नितनई खबर बनकर आज के युवाओं के मन मस्तिष्क पर नायक बनकर अपनी छाप छोड़ जाएगा। वर्तमान में यही हो रहा है। फिर बताइए कि आपका वो धन जो आपने दिन रात मेहनत कर, पेट काटकर, परिवार समाज को समय न देकर जिसके लिए जो धन जोड़ा था, क्या वो आपका निर्णय सही था? आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें तो आप अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। आप अपने को ठगा सा महसूस करेंगे तो आगे भी सावधान हो जाइए, दोबारा से गलती ना करें, नहीं तो पश्चाताप के अलावा आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। रहीम जी ने सही ही कहा है, आधे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य को तुरंत गलती सुधार कर बच्चों को अपना अमूल्य समय देकर एक अच्छे संस्कार देकर एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए जो समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी, शिक्षित नागरिक बनकर राष्ट्र की असली संपत्ति कहलाए। ये काम मनुष्य का असली एवं वास्तविक धन है। कहा भी गया है कि एक अच्छा नागरिक देश का भविष्य होता है जो राष्ट्र, समाज, परिवार आदि को अपनी प्रतिभा के द्वारा लाभ पहुंचाता है और राष्ट्र उन्नति के शिखर पर होता है। ऐसे नागरिक पर सभी लोग गर्व महसूस करते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य अपने सभी ऋणों से भी मुक्त हो जाता है। यही मनुष्य का वास्तविक धन है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः एकत्रिंशत् तथा एकत्रिंशदधिकद्विशतस्य च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेश, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनम्, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाह पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ली आरक्षी विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमित शाहः तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोक संतप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत

0: मजूमदार पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising of several ministers. The delegation will visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said he will join the first World Yogasan Sports Championship 2026 virtually today. The championship will be held at Ahmedabad in Gujarat. Mr. Modi said the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said that the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism,

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्फी रोड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय प्रवास पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में भी शीघ्र लागू होगी समान नागरिक संहिता, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फीडर सेंटर स्थापित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर

0: मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश भी देश का यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय को यूसीसी से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना में खरगोन जिले में एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूँ और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग दो जो सड़कें की सौगात

0: मिली। दो परियोजनाएं ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी।
1: उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। वे अब राजधानी भोपाल में नियमित रूप से ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति मिलेगी। श्री सारंग कल भोपाल के टीटी नगर स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी आशंका है। शिवपुरी में कोलारस की ग्राम पंचायत गोरा टीला में रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। खंडवा में आज जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आगरमालवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छ गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत पेड़ पौधों की साफ सफाई संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर जिले के आदर्श गांव बालाकुड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कलेक्टर अदिति गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। झाबुआ में कल विश्व क्लबफुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में आगामी मॉनसून और संभावित बाढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना के कुंभराज क्षेत्र के ग्राम बड़ौद में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली किस्सा कंडेल साहब। किस्साकार हैं नारायण दास सोनी।
1: किस्सा सी झूठी बातन सी मीठी घरी घरी के विश्राम जाने सीताराम। शक्कर को घोड़ा शक्कर पारे की लगाम छोड़ दो दरिया में चलो जाए छमाछम छमाछम। ई पार घोड़ा ऊ पार घास न घोड़ा घास को खाए न घोड़ा घास को। इतने के बीच में दो लगाए घीच में तो न आए रीत में धर करोरे कीच में। सो झट्ट ही आ गए रीत में हसिया सी सूदी तकुआ सी टेढ़ी पथरा सो कुरो पाला सो कर्रो हाथ भर ककरी नौ हाथ बीज हुए। जरिया को कांटो 18 हाथ लाचो आधो चिड़िया ने चल लो आधे पे बसे तीन गांव। एक उजर एक खुजर एक में मानसई नहीं है जी में मानसई नहीं है उमे बसे तीन कुमार। एक झूठा एक लूला एक के हाथ ही नहीं है जी के हाथ नहीं है उन्हें बनाई तीन हणिया। एक ओंगू एक बोंगू एक के ओठ ही नहीं है जी में ओठ नहीं है उमे चुराए तीन चाहोर। एक कच्चो एक में आचा ही नहीं है जी में नौते तीन बामन एक अफरो एक डफरो एक खो भूखे ही नहीं है। पोनी को डंका बतेसा को नगाड़ो जब बजे तो किसी कड़ी धुम जो इन बातन खो झूठी माने तो राज खो डाड़ और जात खो रोटी देने पड़े। कहत तो कहता सुनता।

सावधान चाहिए। न कहवे बारे खो दोस्त, न सुनवे बारे खो दोस्त, दोस्त ऊखो जिन्हें किस्सा बना के ठाणी करी। ऐसे ऐसे एक गांव में एक बामन को लड़का पढ़वे में बहुत होशियार हतो, सो उन्हें मिडिल पास कर ली। गांव में तो स्कूल हतो नहीं, सो दो कोस दूर नगर में पढ़ू करो। उन्हें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषा पढ़ी थी। फर्स्ट डिवीजन पास भाव, सो गांव तो गांव नगर भर में उको नाव होगा। उसे तो अंग्रेजन को राज देश भर में हतो, पे बुंदेलखंड की क्या रियासतें हती जिते राजा राज कर रहे थे। टीकागढ़ में सो राजा को राज हतो जिते उबामन को लड़का ने मेडल पास करी थी। उस जमाने में पढ़े लिखे आदमी उंगन पे गिनवे लाख हते, सो मेडल पास करवे बारन की खबर राजा तक पहुंच जात। ऊ लड़का की खबर सो राजा को पहुंच गई। राजा को अपनी सेना के लाने अफसर की जरूरत हती, सो ऊ लड़का के घर खबर करवा दे गई के लड़का को नौकरी करवाऊ न हुए तो लड़का को लोआ के बाप राजा नु हाजर हो जावे। लड़का सूदो सांचो हतो, सो बाप असमंजस में पड़ गयो के का करें। ऐसे साल खान बीत गई तो राजा की खबर दूसरा आ गई। लड़का को अफसर बनवे को शौक मन में हतो, तो बाप तैयार हो गयो और लड़का को सेना में अफसर की नौकरी मिल गई। ऊखो कंडेल साहब मतलब कर्नल साहब बना दो गो। फिर लड़का को बन नौकरी रास नहीं आई। उन्हें राजा से बिनती बिनतवारी करी, सो ऊखो पुलिस के दफ्तर को बड़ो बाबू बना दो गो। यही बीचा देश स्वतंत्र हो गो और वो बामन को लड़का नए बने विंध्य प्रदेश में सरकारी पुलिस को बड़ो बाबू हो गो। उके दोस्त यार ऊखो कंडेल साहब कत्ते, सो वे कंडेल साहब ही कतरे। धीरे धीरे नगर में वे कंडेल साहब के नाव से जाने जान लगे। कंडेल साहब देखवे में गोरे चिट्टे ऊंचे पूरे और रोबीले दिखाई देते थे। उनको नाक नक्शा सो नोनो हतो, पे उनके सामने के चार बड़े बड़े दांतन के नातन ने उनके चेहरा की ऐसी माटी कूटी कि वे बेचारे अबेलों कुंवारे बैठे थे। उनके मताई बाप लड़का के हालन को हरदी लगवे की आशा में भगवान हो प्यारे हो गए थे। अब वे अपने हाथन ठोक के खा रहे थे, पे खाते घी की चिपरी सो देह कुंदन सी चमकती। कंडेल साहब भले ही 40 के हो गए थे, पे दिखवे में वे 25 से ज्यादा के नहीं लगत। उनके मेर बारे उन्हें यही बात को एहसास कराउत रखते कि उनको ब्याह तो वे जरूरी करवा कर रहे हैं। वे उनकी इतनी बड़वाई करते कि कंडेल साहब अपन खो सासन को कंडेल मानन लगे थे। कंडेल साहब खाते पीते घर के लड़का वही पे पुलिस के हाकम करेला और नीम चढ़ो, आमदनी रुपया खर्चा चवन्नी, सो पैसा ही कोनू कमी नहीं हती। चार छह लुंगा अगाऊ पिछाई घूमते ही रहते। वे कंडेल साहब खो टोन पे चढ़ाए रहते, सांसी कहिया तो वे गुरखो चींटा की नाई लगे रहते। जब देखो कंडेल साहब के ब्याह की जुगाड़ की बातें करत नहीं लगाते। यही आशा में कंडेल साहब से मनियाओ खर्चा पानी करावे की जुगाड़ जब देखो करत रहते। भले ही कंडेल साहब के जे खैर ख्वा दारू खोर हते, पे वे खुद सूदे सांचे हते, सो उनकी बातन पे भरोसो करत रहे। रोजाऊ दफ्तर से लौट के संजय बिरिया कंडेल साहब के ब्याह की चर्चा करवे और कभू गुलाब जामुन, कभू बालू साई तो कभू लड़ुआ धड़कते ही रहते। शुक्रवार के शनिचर के दिना वे सबरे मेरे बारे उनके घर बैठवे, उनमें से एक को कंडेल साहब से अर्ज करवे के हजूर फलाने गाँव से बिटिया वारे आए थे, सो चल के बिटिया पे नजर कर ले जावे। जा सुन के कंडेल साहब मन ही मन खुश हो जाते। पे उन्हें जो एहसास हतो कि हमारे जाय से हमारे बड़े बड़े दांत देख के बिटिया वारो पहलों की तरह फिर बिचक जाए। इसे कंडेल साहब अपनो बड़प्पन बनाए रहे देखो, मेरे बारे से कह देते कि तुम्हारी और दो जने चले जाओ और बिटिया देख लो, हम तुम्हारी बात थोड़ा ही टार दें। गैल खर्च के लाने तुरते ही रुपया दे देते। उन्हीं पैसन से एतवार की छुट्टी के दिना बचंडाल चौकड़ी दारू मुर्गा छानती। सोमवार को कंडेल साहब के घरे हाजर होके उन्हें बता दी जाती कि हजूर बिटिया आपके लाख नहीं हती, कब हम नोनो घर नहीं होवे की बात कह दी जाती। ऐसे न जाने कितने एतवार और कितनी साले गुजर गई, फिर कंडेल साहब ने ब्याह की आशा नहीं छोड़ी। उनके मेर बारन को हमेशा जेव के बोरतो के आशा से आसमान टंगो, सो जाने कौन दना भगवान सूदो हो जाए, उदना क्षण भर में काम बन जाए। जो सब तो चलते ही रहतो, इके अलावा कंडेल साहब को नगर के रईस लोगन में उठवे बैठवे की सलाह सो उनके दोस्त देते रहते।
उनको

0: बहतु के ईसे उनको नाव अस्पेर के लोगन में आँखों पतो परे और बड़े बड़े घरन से रिश्ते आउन लगे। बरादरी के लोगन में उनकी पेठ बढ़ावे उन्हें कभों कभों दरबार लगावे की सलाह दी गई। कंडेल साहब को बात जच गई सो कंडेल साहब के दरबार समंजन की बेरा लगन लगे। नगर के जाने माने लोगन को बुलाव जावे, दरबार में कंडेल साहब सज धज के बीच में बैठाए जाते और बड़े बड़े लोग उनके आजू बाजू बैठते। दरबार में कंडेल साहब की तारीफ उनके पुल बांधे जाते। कछु कविता कहानियां कही जाती, जैसे कविता नौनी लगत है हो कह वे को ढंग, भुजे चना जो लगत है नौन मिर्च के संग। सब लोग तारियां बजावे, अंत में सबको चाय नाश्ता करवाओ जावे। एक आध दोस्त खाली कैमरा से दरबार की फोटो लेवे को नाटक कर देवे। नगर के लोग कंडेल साहब के बारे में जानने लगे थे, सुबह दरबार को मजा लेवे जरूर आउते। धीरे धीरे समय सरकत रहो, उनके मेहरबान को एक तरकीब सूझी। सबरन ने हिम्मत बांध के डरात डरात कंडेल साहब से अर्ज करी कि इतराजी माफ होवे तो हमन कछु कन चाउत। कंडेल साहब ने कही के डरावे की कोनो बात नहीं है, तुम जो कछु कहो सो हमारे हितई की कहो। उन्हें सलाह दी गई कि जो कहूं अपन जिस सामने के चार बड़े बड़े दांत इचवा के हल्के हल्के दांत बनवा के लगवा दे जावे तो काम बनवे की सोरा आना आशा हो जाए। ब्याह होवे में जे दांत रोड़ा अटकाए। कंडेल साहब को बात जच गई। नगर में दांत निकाले वालो डॉक्टर हतो सो उसे चारों बड़े दांत निकलवा दे गए। अब जब महीना के बाद नए दांत बनवावे की बात वो डॉक्टर से कही गई तो वो बोलो कि हमें दांत बनावो नहीं जानत, हम अकेलो निकालवो ही जानत। अब कोनो बड़े शहर में जाके दांत लगवावे की बात होत रही। दांत लगवे के लाने क्या जावे की विदा विधि नहीं बनी सो कंडेल साहब बोंगे बने रहे। अब तो और को ब्याह खो झोंपने बारो काय खुआन लगो, न दांत लग पाए न ब्याह हो पाओ। ब्याह की ललक मन में लय लय कंडेल साहब की नौकरी पूरी हो गई, वे रिटायर हो गए और अपने गांव जावे की तैयारी होने लगी। उनके मेहरबान ने गांव जावे के पहलों नगर में उनकी सवारी निकारवे खूं सो उन्हें राजी कर लो। कंडेल साहब को सूट बूट और टाई लगवा के स्वापा सो बनवाओगो, घोड़ा पे बैठार के उन्हें पूरे नगर में घुमवाओगो। संगे दोस्त यार और कछु लड़का लुआ के कंडेल साहब की जय के नारे लगवाए गए। कंडेल साहब गदगद हो गए। कंडेल साहब अपने गांव में जाके रन लगे। उतर लड़का बिटियन को कंडेल साहब के बारे में धीरे धीरे जो सब पतो लग गो, बे कंडेल साहब खो चढ़काऊ लगे। कंडेल साहब ब्याह बे मोड़ी मोड़न खो गरियाउत भी रखते और मजा सो लेते रखते। हमारी किसा हती सो पूरी भई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आदमी अगर ज्यादा सीधा हो तो लोग उसे बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली किस्सा कंडेल साहब। किस्साकार थे नारायण दास सोनी। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार के युगल स्वर में एक चादर मैली से फिल्म का गीत। शब्द रचना सरदार पंछी की है, संगीत निर्देशन है अनु मलिक का।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और शब्बीर कुमार को। फिल्म थी एक चादर मैली सी। आइए अब आपको सुनवाते हैं इंसानियत के दुश्मन फिल्म का गीत। आवाज आशा भोसले और सुरेश वाडकर की है। शब्द रचना इंदीवर की, संगीत निर्देशन एक बार फिर अनु मलिक का है। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडकर को फिल्म थी इंसानियत के दुश्मन। और अब मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के पश्चात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। तो जल्दी से जल्दी अपनी पसंद हम तक अपने ईमेल के माध्यम से भेज दीजिए। हमारा ईमेल का पता है aircharpur1976@gmail.com। और आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में तकदीर फिल्म का गीत। शब्द रचना इंदिवर की है, संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे तकदीर फिल्म का गीत, आवाज थी किशोर कुमार की। आइए अब आपको सुनवाते हैं वांटेड फिल्म में किशोर कुमार और टीना मुनीम को। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं बप्पी लहरी। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और टीना मुनीम को फिल्म थी वांटेड। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं वाणी जयराम के स्वर में हैसियत फिल्म का गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने, जिसे संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

वाणी जयराम के गाए हैसियत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण

0: संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लेरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लेरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग

0: मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
3: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
2: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना

0: बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of foreign affairs, economy and finance, science and technology, communication and information, and transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as foreign minister in 2015 and as vice president in 2019, 2023, 2024, and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दो भाग्यशाली श्रोता हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से महेश पाल और जबलपुर से मनीषा साखरदांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से

श्रम मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं, और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरे गांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहां उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान आवश्यक है।

समय की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर सन 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगा

कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमनलाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉ भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक रंग कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के कलाकार हैं उमा शंकर पाठक। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं उमा शंकर पाठक के स्वर में ये दादरा। ढोलक पर हैं महेश कुमार, बैंजो पर संगत कर रहे हैं राजा राम विश्वकर्मा और बांसुरी पर मनोज कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे उमाशंकर पाठक के स्वर में ये दादरा। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं चौकड़िया, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर पाठक के स्वर में ये चौकड़िया। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं ये लोक शैली बद्ध बुंदेली लोकगीत। ढोलक पर हैं महेश कुमार, बैंजू पर राजाराम विश्वकर्मा, बांसुरी पर संगत कर रहे हैं मनोज कुमार। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक शैलीबद्ध बुंदेली लोकगीत, कलाकार थे उमा शंकर पाठक। ढोलक पर थे महेश कुमार, बैंज पर राजाराम विश्वकर्मा और बांसुरी पर संगत कर रहे थे मनोज कुमार। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आपके पत्रों एवं ईमेल पर आधारित लोकप्रिय फरमाइशी फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर आ रहा है आपके मनपसंद सदाबहार और लोकप्रिय गीतों की शानदार प्रस्तुति। इस कार्यक्रम में श्रोताओं द्वारा भेजी गई फरमाइशों, शुभकामनाओं और संदेशों को शामिल किया जाएगा। तो समय याद रखिए, आज सुबह 10:30 पर, और अपनी फरमाइश भेजने के लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं। हमारा पता है aihataprpur1976@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और उस पर भी अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजिए और आगे हम और भी लोकगीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर पाठक के स्वर में ये दादरा। कार्यक्रम के अंत में इन्हीं से आपको सुनवाते हैं ये धुनी भजन। ढोलक पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार, बैंजो पर राजा राम विश्वकर्मा और बांसुरी पर है मनोज कुमार।

उमाशंकर पाठक के गाए धुनी भजन के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए एक ही गायक में उदित नारायण के गाए चंद फिल्मी गीत। साथ ही हम बात करेंगे इनसे जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं की, कुछ रोचक बातों की, जिनसे शायद आप भी अनभिज्ञ होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उदित नारायण की। जी हाँ, उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर सन 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बैसी गांव में हुआ था। आपके पिता हरे कृष्ण झा किसान थे और माता भुवनेश्वरी देवी मैथिली एवं भोजपुरी लोक गायिका थीं। संगीत का पहला संस्कार उन्हें अपनी माँ से ही मिला था। बचपन से ही उदित नारायण का सपना गायक बनने का था। आपने नेपाल के रेडियो नेपाल में मैथिली भोजपुरी नेपाली लोकगीत गाना शुरू किया। उस समय आपको बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था, लेकिन यही उनकी संगीत यात्रा की पहली सीढ़ी बनी। सन 1978 में आपको संगीत की छात्रवृत्ति मिली, जिसके बाद आप मुंबई आए। मुंबई में शुरुआती दिनों में आपको काफी संघर्ष करना पड़ा। कई बार गाने रिकॉर्ड होने के बाद भी दूसरे गायकों की आवाज रख दी जाती थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपकी किस्मत 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक के गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा से चमकी। ये गीत सुपरहिट हुआ और उदित नारायण रातों रात बॉलीवुड के प्रमुख पार्श्व गायकों में शामिल हो गए। इसके बाद आपको हजारों गाने मिले, आपने हजारों गीत गाए और 1990 से लेकर 2000 तक के दशक के सबसे लोकप्रिय आवाजों में आप गिने जाने लगे। आपकी कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो आपने 30 से अधिक भाषाओं में 15,000 से भी ज्यादा गाना गाए हैं। आपको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रही है लगातार मेहनत, धैर्य और संगीत के प्रति समर्पण। रेडियो नेपाल के छोटे से स्टूडियो से शुरू हुई आवाज बॉलीवुड की सबसे मधुर और लोकप्रिय आवाजों में बदल गई। जी हाँ, यही है उदित नारायण की प्रेरणादायक कहानी। और आज जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो इनका एक और मशहूर गाना जिसे हम सभी कभी ना कभी गुनगुनाते ही रहते हैं, वो है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। जी हाँ, फिल्म का ये गीत 1990 के दशक के सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों में गिना जाता है। इसका संगीत नदीम श्रवण ने दिया था और बोल लिखे थे समीर ने। ये गीत पुरुष और महिला दोनों संस्करणों में रिकॉर्ड किया गया था, जिनमें पुरुष संस्करण को उदित नारायण ने और महिला

संस्करण को अलका याग्निक ने स्वर दिया था। ये गीत आमिर खान और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया था और अपनी मधुर धुन तथा भावपूर्ण गायकी के कारण आज भी शादियों और प्रेम गीतों की सूची में ये बेहद ही लोकप्रिय गाना है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये संगीत प्रेमियों के बीच आज भी वैसे ही याद किया जाता है और इस गाने से उदित नारायण को एक अलग ही पहचान मिली। इस गीत की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। यही सरल और भावपूर्ण अभिव्यक्ति इस गीत को सदाबहार बनाती है।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत। आइए अब बात करते हैं इनके एक और सुपरहिट गाने की, जो है फिल्म हमराज से। हमराज फिल्म में बॉबी देओल, अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान की प्रसिद्ध जोड़ी ने किया था और इसके जो गीत है तूने जिंदगी में आके, इस गाने को जो स्वर दिया था, बोल दिए थे, आवाज दी थी, वो थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। इसका संगीत तैयार किया था हिमेश रेशमिया ने और इसके बोल लिखे थे सुधाकर शर्मा ने। ये गीत उस दौर में इतना लोकप्रिय हुआ कि हमराज का पूरा संगीत एल्बम 2002 के सबसे अधिक बिकने वाले बॉलीवुड साउंड ट्रैकों में शामिल हुआ। फिल्म में ये गीत बॉबी देओल और अमीषा पटेल के प्रेम को दर्शाता है। गीत की मधुर धुन और उदित नारायण की भावपूर्ण आवाज ने इसे 2000 के दशक के सबसे यादगार रोमांटिक गीतों में स्थान दिलाया है। जब उदित नारायण की आवाज में तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी ये गाना गूंजता है, तो ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि प्रेम की एक मधुर अनुभूति बन जाता है। तो आइए आपको सुनवाते हैं हमराज फिल्म का ये गीत, आवाज उदित नारायण की है, शब्द रचना है सुधाकर शर्मा का और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का।

अभी आप सुन रहे थे हमराज फिल्म में उदित नारायण को। अब बात करते हैं इनकी अगली फिल्म जिंदा दिल की। जिंदा दिल एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिकाओं में अब्बास, आशिमा भल्ला, ओमपुरी और गुलशन ग्रोवर नजर आए हैं। इस फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने दिया था। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो इस कहानी में देश में घुसे कुछ आतंकवादियों और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारियों के बीच इर्द-गिर्द घूमती रहती है। एसीपी जय और रणवीर आतंकवादियों के नेटवर्क का पता लगाकर उन्हें पकड़ने के मिशन पर निकलते हैं। इस एक्शन और सस्पेंस भरी कहानी में प्रेम, देशभक्ति और संघर्ष का मिश्रण है। इस फिल्म के गीत उस समय काफी लोकप्रिय हुए थे, खासकर इकरार हो ना जाए, एक मासूम सा चेहरा और मेरा साजन आ गया। इन गीतों को श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। इनमें उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज ने गीतों को यादगार बना दिया। जब नदीम श्रवण की धुन और उदित नारायण की आवाज मिलती है तो इकरार हो न जाए जैसा गीत दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं जिंदा दिल फिल्म का ये गीत, आवाज उदित नारायण की है।

उदित नारायण के बचपन की बात करें तो स्कूल के कार्यक्रमों और स्थानीय मेलों में आप गाना गाया करती थी। लोगों की प्रशंसा ने आपके भीतर गायक बनने का एक आत्मविश्वास जगाया। मुंबई में शुरुआती दिनों में आपने कई बार अस्वीकृति का सामना भी किया और आपकी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स आवाज रिकॉर्ड होने के बाद भी अंतिम संस्करण में दूसरे गायकों की आवाज बन जाती थी, जिससे आपको काफी हताशा का सामना भी करना पड़ा। आपकी आवाज की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि आपकी आवाज में मिठास, उच्चारण स्पष्ट और भावनात्मक जो अभिव्यक्ति थी वो बहुत ही गहरी थी। इससे आपके गानों की जो रोचकता थी वो हमारे दिलों में आज भी बसी हुई है। 1990 और 2000 के दशक में आप रोमांटिक गीतों की पहचान बन गए। प्रेम गीतों के लिए आपकी आवाज निर्माताओं की पहली पसंद बन गई। आपने अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल,

और साधना सरगम जैसे कई गायिकाओं के साथ बहुत ही बेहतरीन और हिट जोड़ी दी है और बहुत ही सुपरहिट गाने गाए हैं। आप अपनी सफलता का श्रेय अक्सर अपनी माँ के संगीत के प्रति समर्पण और श्रोताओं के प्रेम को देते ही रहे हैं। मंच पर आपका स्वभाव बेहद विनम्र और सरल माना जाता है, जिसके कारण आप संगीत जगत में काफी सम्मानित हैं। आपके कई गीत आज भी विवाह समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रेडियो पर नियमित रूप से सुनाई देते हैं। कार्यक्रम का जो अगला गीत लिया है वो है फिल्म कोई मिल गया, कुछ कुछ होता है फिल्म से कोई मिल गया गाना। ये बेहद ही लोकप्रिय और चुलबुला गीत था, जिसे उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। संगीत जोड़ी थी जतिन पंडित और ललित पंडित की, यानी जतिन ललित की, और गीत लिखा था समीर ने। तो आइए आपको सुनवाते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत, लेकिन इससे पहले सुनिए आकाशवाणी संदेश।

उदित नारायण के गायक कुछ कुछ होता है फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही गायक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे उदित नारायण के गाए चंद फिल्मी गीत। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। लीजिए अब सुनिए जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं।

0: प्रस्तुत है न।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में इन दिनों बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जनसमुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त टैबलेट जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कटनी में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ई केवाईसी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देश द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी की कार्यवाही सभी हितग्राहियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस सीधी अभियान चलाया गया। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन में गठित पुलिस सीधी की विशेष टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। टीम ने चौपाटी, मनोरंजन, मेला सहित अन्य भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पिछले दिनों कटनी में मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की सदस्य और प्रख्यात कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कटनी जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले भर में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों, विस्फोटक भंडारण मैगजीनों और अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्रियों तथा स्टोर हाउसों की व्यापक जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉ आशीष रेजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से प्रारंभ होकर जिले के 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सालय से योग आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योग सत्र संचालित किए जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान और कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में 19 मार्च से जिले में जल स्तर को सुधारने और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजने के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 में जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बलराम तालाब की श्रेणी में जलगंगा संवर्धन अभियान के मामले में कटनी प्रदेश के 4 अग्रणी जिलों में शामिल है।

जिला प्रशासन और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से अब तक जिले में 3,284 जल संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिससे पानी को सहेजने और उसके संरक्षण तथा संवर्धन में मदद मिलेगी। कटनी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य पूरा हो गया है। इसमें कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अब प्रगणकों द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को ट्रेस का काम किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये आकर
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सबरंग के अंतर्गत लोकराग। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं वीणा श्रीवास्तव के स्वर में बघेली लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं वीणा श्रीवास्तव के स्वर में ये विकास गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे वीणा श्रीवास्तव के स्वर में ये बघेली लोकगीत। इन्हीं से आपको सुनवाते हैं एक और बघेली लोकगीत, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

अभी आप सुन रहे थे वीणा श्रीवास्तव के स्वर में ये विकास गीत। इन्हीं से आपको सुनवाते हैं एक और विकास गीत, लेकिन इससे पहले आप सुनिए आकाशवाणी संदेश।

0: 90.
1: एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं वीरा श्रीवास्तव के स्वर में बघेली लोकगीत। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, अब से कुछ देर बाद 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। तो यदि आप भी अपने फरमाइशी गीतों के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अब आप हमारे फेसबुक पेज से भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं और हम इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप ईमेल का जो हमारा पता है तो वो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूं कि ईमेल एड्रेस है aircharpur1976@gmail.com। तो यदि आप लाइव हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप अपनी फरमाइश हम तक भेज सकते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं वीणा श्रीवास्तव के स्वर में ये बघेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे वीरा श्रीवास्तव के स्वर में ये बघेली लोकगीत। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं एक और बघेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे वीणा श्रीवास्तव के स्वर में ये विकास गीत। कार्यक्रम के अंत में इन्हीं से आपको सुनवाते हैं एक और विकास गीत बघेली लोकगीत में।

वीणा श्रीवास्तव के गाए बघेली लोकगीत के साथ ही सबरंग का ये लोकराग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: रहो न होश में दीवानो,
1: अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण व साथियों की आवाज में मन फिल्म का गीत। शब्द रचना समीर की थी, संगीत निर्देशन था संजीव दर्शन का, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र थे। इस क्रम में फेसबुक पर जो हमारे मित्रों ने फरमाइश भेजी है उनके नाम है, ग्राम मजगुवा कला पोस्ट अमरोनिया जिला छतरपुर से लखनलाल यादव, नेहा यादव, अनन्या यादव, अनुष्का यादव, अभिमन्यु यादव। ये अगली फरमाइश आई है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार वाले। इसी क्रम में ये अगला फरमाइश आई है, अगली फरमाइश आई है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब रामचबूतरा कालपी से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। फेसबुक पर ही अगली फरमाइश आई है पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसू तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये अगली फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। फेसबुक पर ही अगली फरमाइश करता है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वानी आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनी। और ये हमें फरमाइश भेजी है दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से, सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से, लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। फेसबुक पर ही अगली फरमाइश है गोविंदगढ़ मांझी वाला श्री करणपुर राजस्थान से, राजू टूटे जा, खुशदिल उर्मिला टूटे जा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव सेठी, करणपुली, पाल मिस्त्री करणपुरी और इस्माइल टूटे जा। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश आई है ग्राम कोलासर तालुका नांदुरा महाराष्ट्र से, प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और संकेत बगाड़े। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति।

बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, समिता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और समस्त माखीजा परिवार वाले। ये अगली फरमाइश है, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और अयान बाबू। ये अगली फरमाइश है, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बैनी सागर, माफ कीजिए, बैनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। पूजा रेडियो श्रोता संघ परेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव। ये अगली फरमाइश भेजी है, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नन्नी कुमारी और इनके परिवार वालों ने। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश आई है, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांवड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांवड़े। ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, यज्ञता पाल और निवेदिता पाल। फेसबुक पर ही अगली फरमाइश है, चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू और इनके परिवार वाले। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये फरमाइश हम तक फेसबुक के माध्यम से भेजी है, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश है, फर्रुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया और सरोज चौरसिया। राजकमल रेडियो श्रोता आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नौमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले, धोतर जोरा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। और ये इस गीत की अंतिम फरमाइश थी, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक की। आइए अब आपको सुनवाते हैं परदेश फिल्म का गीत, आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, आदर्श नगर मलोर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और इनके परिवार वाले। ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मुइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान और इनके परिवार वाले। अगली फरमाइश में केवल नाम है दीपेश वर्मा जी का, इन्होंने अपना पता छतरपुर ही लिखा है और कृपया अपना नाम और पता अच्छे से लिखकर भेजें ताकि हम आपकी फरमाइश आप तक पहुंचा सकें। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश है, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव की। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और इनके परिवार वाले। अगली फरमाइश है, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह और सुनीता सिंह। अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू और समस्त साहू परिवार वाले। इसी क्रम में अगली फरमाइश है, जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता रिसीवन, नीलकंठ चंद्रहास, हीरेन्द्र संजीवन, त्रिलोक कुमार, मास्टर रंजीत सिंह साहू की। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर। ग्राम पोस्ट गौना कुसमार थाना सौंजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, राम देवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखन नामदेव।

चाहना, आकाश, रानी परी, सुरभि, पायल और इनके मम्मी पापा। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई, तहसील सिल्लोड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और यज्ञेश घोड़के। और इसी गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं सप्तरंग श्रोता परिवार, कुम्हार गली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवड़े। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं परदेश फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे परदेस फिल्म का गीत, आवाज थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। और अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी संदेश।

0: Akashwadi at 90.
1: आपकी पसंद कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हीरो फिल्म का गीत, आवाज अनुराधा पौडवाल और मनहर की है। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं जिन्होंने हमें ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजी है। ग्राम आमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा यहीं से सुनना चाहते हैं। साधु बाबा, वीरेंद्र सिंह तोमर, संजय, दीपक और सोनू तोमर। इसी क्रम में अगली फरमाइश है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, मोटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और इनके परिवार वाले, ग्राम तालगांव तहसील भंडार जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नांगल, संतोष कुमार नांगल, प्रताप सिंह नांगल, अभिषेक कुमार नांगल, शिवम कुमार नांगल, शिव कुमार, गुड़िया, कविता, रंजीत, गीता और इनके मम्मी पापा। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रिहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, नानक जंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानू पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब रामचबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा शाविस्ता मंसूरी, नसीब पलक लुबना यश मंसूरी। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमला भावसार। ये अगला मेल हमें

भेजा है सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन ये ले, नवदीप ये ले, विश्वदीप ये ले और अचूक ले ले। इसी क्रम में ये अगली फरमाइश है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल की, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब। और इसके अलावा यहीं से एक और फरमाइश है जामा मस्जिद रोड गौगावा से हाजी इसहाक लोलमानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। ये अगली फरमाइश हम तक लिख भेजी है बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, सविता, स्वाति, महेश, संध्या, पूजा, छुटकी, उनके परिवार वाले। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम और राजवाड़े। और इस गीत की ये अंतिम फरमाइश है गांव शोभापुर मेरठ केंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। तो आइए आप सभी की पसंद पर

अनुराधा पौडवाल और मनोहर के गाए हीरो फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहती है डॉक्टर प्रणति चतुर्वेदी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है अगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम बात आपकी, गीत हमारे। जब से मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया है, उसकी प्रगति थमी नहीं है। ये पहिया ऐसा चला कि आज तक नहीं थमा है। इसने जीवन के कई नए आयाम को खोज और आविष्कार के माध्यम से सुलभ बनाया है। तो श्रोताओं, आज बात करेंगे साइकिल की। ये आपके जीवन में क्या परिचय देती है और आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? शुरू करते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ जुड़कर।
2: प्रणाम मैम, नमस्कार आपको करता हूँ। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: जी संतोष जी, कैसे हैं?
2: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके प्रसारण सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आप आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मैडम आपसे बातें करते हुए हमें।
1: और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना?
2: तो
1: संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहला फोन कॉल आपका है और जानना चाहते हैं कि साइकिल जो है वो आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल, उमंगों का खास एक सुकून भरा एहसास जो दिलाता है वो साइकिल होती है। हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक जो शौक रहा है हमारा, अब तो चल खास करके टू व्हीलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो साइकिलें होती है उससे हमारी शारीरिक मानसिक जो ऊर्जा शक्ति होती है उसका निर्माण होता है। और साइकिल चलाने से हमारी जो पैर की कसरत है वो भी पूरी होती है और इसे बहुत ज्यादा हमें सुकून भी मिलता है मैडम जी।
1: तो आप साइकिल को सुकून का एक जरिया मानते हैं?
2: बिल्कुल मैम, खास करके हम जब युवा रहे हैं, बताएं आपसे, अभी भी हम युवा ही हैं और हम लोग जब स्कूले जाते हैं साइकिलों से तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: चलिए साइकिल चलाते रहिए, तो आपके जो युवावस्था है ये एक लंबे समय तक तो जरूर बरकरार रहेगी। संतोष जी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपने बहुत अच्छी बातें की, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बिल्कुल मैम, और आपके प्रसारण लगातार हम तक पहुँच रहे हैं। न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के साथ साथ DTH पर भी आपका जो कार्यक्रम जाता है ना आकाशवाणी मध्य प्रदेश का, बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी ऐसे कार्यक्रम को।
1: जी जी जी जी, साथ में वेब्स OTT ऐप जो है उसके भी 2 वर्ष हो गए हैं हमारे, और इस पे भी आप प्रसारण सुनिए तो आपको भी बहुत आनंद आएगा।
2: बिल्कुल मैम, और साथ में फेसबुक पर भी जो कमेंट मतलब जाते हैं आकाशवाणी भोपाल के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मैडम जी।
1: आप बहुत सक्रिय श्रोता लग रहे हैं हमारे संतोष जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल मैम, लगातार पत्रचार भी हम लोग करते थे, आकाशवाणी पदाधिकारी हैं जहां उनके निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण होता रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का संचालन भी अभी किया जाता है।
1: अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि आपने कहा कि आप पत्र लिखा करते थे, तो वो लिखा करते थे को लिखा करूंगा बोलिए और लिखना शुरू कीजिए।
2: आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश तक जरूर पहुंचेगा कार्यक्रम मन भावन और कार्यक्रमों के लिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: आपका परिचय दीजिए।
0: हम रजनी सोनी बोल रहे हैं दीदी। हम बालाघाट जिला से बोल रहे थे। नहीं
1: जी साइकिल चलाना जानती हैं?
0: नहीं नहीं
1: लेकिन साइकिल का महत्व है आपके जीवन में, साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है ये बताएं।
0: अब देखो दीदी, अब हम बच्चे वाले हो गए। पहले हम पढ़ते थे तो चलाते थे, अब क्या है हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं।
1: तो बच्चों को साइकिल इनाम में दी कभी?
0: अरे अब देखो, बच्चे अपने पढ़ रहे हैं तो अपन तो उनके लिए लेते थे ना साइकिल। स्कूल जाते थे, प्राइवेट स्कूल, तो पहले क्या है बस का साधन नहीं, तो 4-5 किलोमीटर में बच्चे चलाते जाते थे। हमारे तीनों बच्चे में पढ़ गए हैं
1: हाँ, तो देखिए जब हम वाहन चलाना सीखते हैं ना तो सबसे पहले
0: अभी।
1: हमें
0: तो
1: साइकिल
0: हमारा
1: सीखनी
0: बड़ा वाला
1: पड़ती है।
0: बेटा, हमारे यहाँ गाड़ी वाड़ी सब है, बाकी वो कहता है साइकिल चलाने से स्वस्थ रहते हैं, जबकि वो साइकिल चलाने और शौक लगती है उसको, तो ऐसे व्यायाम टाइप का। हाँ, तो इसलिए वो गाड़ी भी है, पर वो कहता है साइकिल से बहुत स्वस्थ रहते हैं करके, वो साइकिल भी फिर अब से फिर से खरीदे हैं। साइकिल के बच्चों ने पढ़े तो हमने उनको देख दिया जब उन बड़े बड़े हो गए थे। जी,
1: तो अभी दोबारा साइकिल खरीदी उन्होंने।
0: अब वो क्या है थोड़ा सा बोलते हैं गाड़ी गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है, तो साइकिल में थोड़ा सा अपना इधर उधर आस पास घर के थोड़ा सा घूम लेते हैं।
1: हाँ चलिए, तो साइकिल वो अपने व्यायाम के तौर पर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश,
1: आपका परिचय बता दीजिए।
0: मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप मैडम?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं। मुन्ना सोनी जी, हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है, बताएं।
0: मैडम कम से कम 33 साल हो गया है मुझे साइकिल चलाते हुए।
1: जी
0: और आज भी जो है मैं साइकिल चलाता हूँ। वो सबसे बड़ी चीज साइकिल चलाने से बहुत से फायदे हैं।
1: हाँ हाँ,
0: जैसे हाथ पैर में आपके लिए कभी दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ,
0: कमर में दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ,
0: और स्वास्थ्य भी अपना बहुत बढ़िया रहेगा।
1: हाँ,
0: और दूसरी चीज क्या है कि आजकल क्या है कि जरा जरा से काम के लिए बच्चे जो है बाइक से या मोटरसाइकिल से मार्केट चले जाते हैं, वो अपने लिए जो है साइकिल से आसपास के अपने काम निपटाना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही,
0: उसमें स्वास्थ्य भी अपना बढ़िया रहेगा।
1: जी जी जी, इसमें काफी कुछ आपकी, देखिए सांस भी आपकी अच्छी हो जाती होगी इससे, क्योंकि इसमें काफी बल लगता है।
0: बढ़िया फिट रहते हैं।
1: हाँ शारीरिक बल लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। और पैरों की कमर की तो आप बता ही रहे हैं कि इससे आपको काफी
0: पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं अपने लिए हम।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा मुन्ना सोनी जी, आपने साइकिल के इतने इतने अच्छे फायदे गिनवाए।
0: जी मैडम नमस्कार, थैंक यू मैडम।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार
1: हाँ, आप कौन बोल रही मैम?
0: जी। मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ।
1: हम जानकी गुप्ता हूँ, ग्राम भगवंत नगर माजरा, जिला टीकमगढ़।
0: जी
1: बल्दी से ट्राई कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए ट्राई
0: हाँ
1: करके। समझ
0: हाँ हो जाता है, बहुत लोग बातें करते हैं, 10:30 का इसका वक्त होता है। तो जानकी गुप्ता जी, आज हम बात करना चाहते हैं साइकिल पर। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से साइकिल आप के लिए कितनी उपयोगी है?
1: मैडम, बहुत उपयोगी है। ना पेट्रोल लगना, ना डीजल लगना है, ना उसका धुआं आने, कुछ भी नहीं आने। अगर चला ली तो अपन कहीं जाते
0: अच्छा।
1: हैं साइकिल से।
0: तो आपके घर
1: जब हम स्कूल जाते थे तो साइकिल ही से जाते थे, जब इतनी गाड़ी आड़ी तो चलती नहीं थी।
0: हाँ सही बात है, अधिकतम लोग तो साइकिल से ही स्कूल जाया करते थे।
1: हाँ, अब तो ऐसी गाड़ी चल गई थी, अभी स्कूटी चल गई, बच्चा स्कूटी से जाते हैं, लेकिन हम लोग तो साइकिल से जाते थे, कम से कम 6 किलोमीटर दूर। अगर साइकिल खराब भी हो तो पैदल भी जाते।
0: सही बात है। तो जानकी गुप्ता जी,
1: हाँ
0: आज भी आपके यहाँ साइकिल है या नहीं?
1: है मैम, हमारे यहाँ साइकिल साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है।
0: और उसका उपयोग कौन करता है?
1: मेरे पति तो है नहीं, मेरे बच्चा है और बच्ची है।
0: अच्छा, साइकिल चलाते हैं वो लोग।
1: हाँ, साइकिल ऐसे कहीं जाते हैं साइकिल से चले जाते। लड़की पहले चलाती, नौवां में पढ़ती थी तो साइकिल से जाती थी स्कूल। और हम गांव में रह रहा इस समय, तो
0: हाँ
1: वो कम से कम काफी देर से उसने साइकिल चलाई, तो थोड़ी बहुत चला दी, भूल सी गई भी। अब कल लगती मम्मी हम भूल गए साइकिल चला। मंदिर गई थी हमारे साथ, तो चलाती गई थी, एक लड़की के साथ गई थी, उसने दोनों जने चला के गई थी।
0: जानकी गुप्ता जी, आप अपनी बेटिया से कहिए कि वो साइकिल का अभ्यास करे, क्योंकि साइकिल चलाना, तैरना, ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जो इंसान एक बार सीख ले तो वो भूलता नहीं है ना? तो बस थोड़ा सा अभ्यास करेगी तो उसको आत्मविश्वास आ जाएगा उसमें कि मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरे से बनती है।
1: सही है मैम।
0: तो चलिए, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है साइकिल आज, क्योंकि देखिए बिना गाड़ी के तो हमारा काम हो नहीं रहा है, और पर्यावरण की मांग भी है ना? अभी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे। जाहिर बात है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रदूषण जो होता है वो धुएं से हो रहा है
1: धुएं से होता है।
0: ना? तो जहां संभव हो सके वहां हमें बचत करनी चाहिए, धुएं कम निकलें इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबका एक प्रयास जो है वो रहेगा, तभी ये काम सार्थक हो पाएगा।
1: हाँ मैम,
0: जी जानकी गुप्ता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार।

0: नमस्ते मैडम, मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत रिटायर शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ। मैडम,
1: आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर ईंधन की कमी हो रही है, और वैसे भी जीवाश्म ईंधन जो है वो एक न एक दिन तो खत्म होगा ही,
0: होगा वो तो निश्चित है।
1: हाँ, तो ऐसे में जब संकट की
0: योगी मैडम साइकिल से तो बताया ना मैं कि साइकिल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आपको अगर शुगर है या बीपी है तो साइकिल आपको बहुत रोकथाम कर देती है, और साइकिल आपकी सस्ती भी है, और साइकिल आपकी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया है। साइकिल से अपना स्वास्थ्य भी सुधरता है और मेंटेनेंस की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार की कोई परेशानी रख रखाव से लेकर हर चीज की पूरी समस्याएं हल कर देती है मैडम।
1: जी जी,
0: 20 साल साइकिल चलाया हूँ मैडम मैं था, और नदी पहाड़ सब थे, साइकिल सब जगह चल जाती है, नदी पहाड़ कहीं भी चला लूँ साइकिल बहुत सुलभ है।
1: हाँ, और छोटे मोटे नाले पड़े हैं तो हाथ में उठा करके भी साइकिल पार कर लेते हैं,
0: कंधे में रख करके ले जा लूँ चल जाती है।
1: चाह रहे थे, क्योंकि देखिए आज के परिपेक्ष में जहाँ ईंधन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो ऐसे में
0: मेरा नाती है मैडम, ये भी बहुत साइकिल चलाता है, लीजिए इससे थोड़ा बात कर लीजिए।
1: बिल्कुल।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम कबीर जैन है।
1: और कबीर, साइकिल चलाते हैं आप?
2: हाँ यस मैम।
1: और कैसा लगता है साइकिल चलाना?
2: अच्छा लगता है।
1: अच्छा, तो साइकिल से आप कहाँ कहाँ जाते हैं?
2: स्कूल, शॉप और साइकिलिंग में चल जाते हैं।
1: और मम्मी कोई सामान लाने के लिए कहती हैं तो साइकिल से जाके जल्दी से ला के देते हैं?
2: हाँ,
1: है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा कबीर, ये शौक हमेशा बनाए रखिए।

0: भैया।
1: सुरेश जी,
0: हाँ
1: हम ये जानना चाहते थे कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं है ना,
0: हाँ
1: स्कूल में जो 10वीं 11वीं कर लेते हैं या फिर जब जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो वो जिद करने लगते हैं घर में कि हमें गाड़ी खरीद के दी जाए। देखिए, जरूरत के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन एक स्टेटस की बात जब बच्चे करने लगते हैं कि क्योंकि वो लोग गाड़ी से आते हैं तो हम साइकिल से क्यों जाएं, भले ही उनके घर से 2-3 किलोमीटर पे ही विद्यालय है या कॉलेज है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि नहीं हमें गाड़ी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास गाड़ी है। तो वो तुलनात्मक दृष्टि से जब वो बोलते हैं तो वो कितना सही बोलते हैं।
0: और तुलना नहीं करिए, अगर पास में स्कूल है तो अपन को भाई पास पैदल चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, मतलब
1: हाँ,
0: उनका कहना मानना चाहिए। आजकल बच्चों को भी, माता पिता का भी भाई।
1: बिल्कुल सही।
0: मेरा सुझाव ये आपसे मतलब है,
1: हाँ
0: बच्चों को माता पिता का कहना मानना चाहिए। पास में का स्कूल बोले पैदल चले जाओ, साइकिल पे चले जाओ, साइकिल क्या है तो मतलब।
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ऐसा है ना कि साइकिल अगर आप चलाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, पेट्रोल से पैसे
0: स्वस्थ
1: भी
0: भी रहेंगे,
1: बचेंगे।
0: अपना खून का दौरा भी चलेगा और कसरत हो जाए, एक सुस्ती नहीं आएगी शरीर में एक।
1: और सही बात तो ये भी है ना सुरेश कुमार जी कि आर्थिक दृष्टि से भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है ना।
0: हाँ
1: एक
0: सर,
1: हाँ बड़ी धनराशि जो है वो घर से खर्च करनी पड़ती है
0: खर्च
1: उसे
0: करनी
1: लेने
0: पड़ती
1: के
0: है
1: लिए।
0: मतलब, और पेट्रोल अगर जहाँ गाड़ी पेट्रोल नहीं, गाड़ी वो रखनी पड़ती है।
1: हाँ
0: साइकिल तो अपन कहाँ भी पैदल भी ले आ सकते, चला भी सकते, मतलब उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है।
1: हाँ चलिए
0: मेरा विचार ये दीदी क्या।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे विचार हमें दिए हैं सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
0: हाँ धन्यवाद मैडम।

0: मैं जिला सागर तहसील बंडा से भोले लोधी बात कर रहा हूँ।
1: जी जी, बहुत स्वागत है भोले लोधी जी आपका। कि बच्चे जो हैं वो आज साइकिल जब चलाते हैं
0: जी,
1: तो उनकी खुशी जो है इनाम के तौर पर जब हम उन्हें देते हैं तो वो बड़े खुश रहते हैं, और लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं है ना, तो वो उनको ये लगता है कि अब हमें गाड़ी चलानी चाहिए, साइकिल नहीं चलानी चाहिए। वो देखा देखी में भी ऐसा कहते हैं। तो ये देखा देखी वाली जो बात है साइकिल ना चलाने की, वो कहाँ तक उचित है ना? तो लेकिन साइकिल जो है वो एक स्टेटस सिंबल लोग बाग बना लेते हैं कि इस हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम बहुत संपन्न और इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं, और साइकिल चलाने को आज कई लोग जो है हीन भावना से देखते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है?
0: मैम वैसे साइकिल तो ठीक है, वैसे पर्यावरण से भी बच्चे माने बचा है, पेट्रोल बचता है, सही है।
1: जी,
0: साइकिल का उपयोग ज्यादा करते हैं यही। साइकिल तो बहुत अच्छी है, पहले आदमी बोलते थे साइकिल से काम होता था, बहुत अच्छा लगता था, जहाँ जहाँ जाती थी। साइकिल तो सही है मैम, लेकिन बच्चों को नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना चाहिए, रोड पे सड़क पे चलाना चाहिए।
1: नहीं नहीं, गाड़ी नहीं देना चाहिए, साइकिल तो खैर ऐसा है कि जब बहुत छोटे रहते हैं तो वो अपने घर के सामने आसपास चलाते हैं, तो
0: ये तो है, चलाते हैं घर के आसपास।
1: हाँ, नहीं हमारा तो प्रश्न खाली ये था कि जो बनावटी दिखावटी जो दुनिया है उस पे दिखाने के लिए जो बच्चे जिद करते हैं ना कि नहीं अब हम साइकिल नहीं चलाएंगे, जरूरत नहीं है उन्हें बड़े वाहन की, लेकिन तब भी वो जिद करके जो है वो स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने की जिद करने लगते हैं, उसकी हम बात कर रहे थे।
0: दो मिनट का रोज हमें कहाँ कर देता है अपन के लिए, रोज नहीं करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भोले लोधी जी, और आप जैसे सक्रिय श्रोता जो हैं, सुधी श्रोता जो हैं, कृतज्ञ हैं कि वो हमारे लिए इतने अच्छे विचार देते हैं और हमारे रेडियो के साथ में हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपने बात की।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, परिचय दे दीजिए।
1: जी। लक्ष्मण सिंह चंदेल, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बात कर रहा हूँ मैं।
0: आज विश्व साइकिल दिवस है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं
1: अच्छा मैम
0: जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि
1: जी,
0: इनाम के तौर पर कभी साइकिल मिली है, या आपने किसी को दी है, या साइकिल जब हमें कभी कोई मिल जाए कभी बतौर इनाम, है ना। कभी कभी दोस्त भी आपस में एक दूसरे से कहते थे, जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो एक साइकिल चला रहा है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो कहता है अच्छा मैं एक राउंड मारने के लिए मुझे दे दे, है ना। फिर वो जो खुशी मिलती है ना जब उसे मिल जाती है साइकिल, तो वो
1: देखिए मैम, ऐसा है, साइकिल तो मैम हम अभी भी चलाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ
1: जी जी बिल्कुल, और खेत पे जाते हैं तो साइकिल से ही जाते हैं मैम। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आप बता रही हैं मैम,
0: हाँ हाँ
1: कुछ मित्र लोग भी मांग लेते, क्या बताया हमें राउंड लगा के आ रहे हैं,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: बाद में आपकी वापस कर
0: तो वही हम कह रहे हैं कि इनाम के तौर पर भी कभी कभी हमें जब साइकिल मिलती है ना, या
1: देंगे।
0: पहली बार जब कभी आपको साइकिल मिली होगी, तो आप कितने प्रसन्न हुए थे और क्या आपका अनुभव रहा था, ये बताइए,
1: प्रसन्न का
0: कुछ याद
1: मैम,
0: है
1: पहली
0: तो।
1: बात तो है, जब हम सीख रहे थे चलावो मैम, तो
0: हाँ
1: हम यही विनती करते भगवान से, कम पर साइकिल बन लगे हम नारियल फोड़। जो बहुत बहुत बन लगी थी, पर कैची, पहले कैची सीख रहे थे मैम, तो
0: हाँ
1: कैची के बाद में फिर डंडा, फिर सीख पे ऐसे सीख पाए थे।
0: हाँ क्योंकि छोटी साइकिलें बहुत कम बनती थी, बड़ी
1: जी
0: साइकिल होती थी तो कैची चलानी पड़ती थी, क्योंकि सीट तक
1: बिल्कुल मैम,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: हाँ पैर नहीं
1: और
0: पहुंचते
1: कहीं
0: थे।
1: भी, जैसे अब जगदीश रथ यात्रा हो अभी आ रही है जो मैम,
0: हाँ
1: इसके लिए हम लोग पथरिया जा रहे थे, कोई चलो कोई 3 जना चलेंगे, आपको टेबल चलाएंगे, कहीं आधी रास्ता में तुम चलाना, आधे में हम चलाएंगे। बहुत
0: हाँ
1: मजा आ रहा था मैम।
0: चलिए, कितना अच्छा लगता है ना, साइकिल के पुराने दिन भी याद कर लो तो बड़ी खुशी होती है ना।
1: बिल्कुल मैम,
0: चलिए लक्ष्मण सिंह चंदेल जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई,
1: जी
0: और साइकिल चला करके आप यूं ही खुश रहा कीजिए।
1: बिल्कुल मैम,
0: चलिए नमस्कार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार,
0: जी, नमस्कार
1: परिचय दे दीजिए आपका।
0: जी। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार साहू।
1: जी
0: मैं कटनी से बोल रहा हूँ,
1: जी
0: मध्य
1: जी
0: प्रदेश कटनी से।
1: जी जी जी बहुत स्वागत है आपका।
0: मैं एक्चुअली मैम आर्मी से हूँ
1: आर्मी में हैं तो आप लोग क्या साइकिल चलाते हैं?
0: जी। साइकिलिंग करते हैं मैम।
1: अच्छा, तो साइकिल का कितना महत्व है आर्मी में?
0: साइकिलिंग एक्चुअली मैम हम लोग क्या है, जैसे ड्यूटी एरिया थोड़ा सा दूर है तो क्या है, हम लोग या तो बाइक रखते हैं या तो साइकिल वगैरह रख लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जी। तो देवेंद्र कुमार साहू जी ये जानना चाहेंगे कि आजकल तो बहुत एडवांस साइकिलें आने लगी हैं, तो अच्छी साइकिलें भी आ चुकी हैं, लेकिन तब भी लोगों का रुझान जो है वो साइकिल की तरफ नहीं है। तो साइकिल की
0: हाँ
1: तरफ रुझान जो लोगों का बढ़े, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: आजकल क्या है, रूटीन भी लोगों का ऐसा हो गया है कि पैदल चलना नहीं चाहते, है ना।
1: जी।
0: तो अगर साइकिल से अगर जाते हैं तो बहुत ही पेसिंग करना है, थोड़ा सा दूर है 2-3 किलोमीटर, तो साइकिल से अपना काम हो
1: हाँ,
0: जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। और साथ साथ में हम तो ये कहते हैं कि साइकिल के प्रति रुझान यदि वो बढ़ा लें तो व्यायाम भी होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा होगा।
0: बॉडी फिट रहेगा,
1: हाँ, और पेट्रोल बचेगा, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है।
0: तो ये सब में कंट्रोल होगा।
1: जी, बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार।

0: तो श्रोताओं, साइकिल कितनी उपयोगी है इस विषय पर श्रोताओं ने अपने विचार दिए। आज साइकिल चलाना कई लोग पसंद नहीं करते, वक्त की कमी की बात कहते हैं तो कभी दूरी की। लेकिन मित्रों, पर्यावरण की दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल को अपनाना जरूरत बन गई है। आज एडवांस साइकिल मार्केट में उपलब्ध है, गियर होते हैं, उसमें बैटरी भी होती है। ये सारी सुविधाओं को यदि आप अपनाएंगे तो आपको आसानी भी रहेगी और आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल देश हित में साबित होगी। चाहते थे लोगों में साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़े, तो अब कार्यक्रम समेटने की अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री यवेद कपूर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कपूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां जारी है। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। और भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में शुरू हो रही 4 दिवसीय ओपन रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुति कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारनी सूरज ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा और इसी गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन ने।

अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से ये हमारे श्रोता हैं, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्ताफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं बरसात की एक रात फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

शादाब खत्री और बेरड़ी से ये हमारे श्रोता ने पत्र भेजा है। हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु करमकर ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत।

और बच्चों को मरीन डाइवर्सिटी समझाने के लिए बनाया गया है। ये एक प्रसिद्ध मरीन लाइफ एक्वेरियम है जहां बंगाल की खाड़ी के समुद्री जीव प्रदर्शित किए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह रसूल से हो जाता है। सारे और रसूल के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगती है। अपनी बेटी को नाखुश देखकर हसन बट एक दिन फाता पर बरस पड़ते हैं। इसके बाद हसन बट घर छोड़कर पास ही एक कोठरी में रहने लगते हैं। एक दिन मुश्ताक हसन बट से मिलने आता है, जहां सारे से मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच की गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और वे अक्सर मिलने लगते हैं। अब आगे।

0: भागे है मुश्ताक, आओ बड़ी देर कर दी।
1: वो सारे कुछ लोग मिल गए थे।
0: मुश्ताक मुझे एक जरूरी बात करनी है।
1: हाँ हाँ बोलो, क्या बात है?
0: अब हम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। गांव वालों को हमारे मिलने की भनक लग गई है और वे लोग हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
1: सारे तुम फिक्र ना करो, गांव वाले हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। जब हम एक हैं तो हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा।
0: पर मुझे बहुत डर लग रहा है मुश्ताक, अगर ये बात गांव में फैली और रसूल को पता चला तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हमें कुछ करना चाहिए मुश्ताक।
1: अरे तुम इतनी परेशान ना हो, मैं तलाक के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रसूल के आने के बाद ही कुछ हो सकता है।
0: ठीक है, पर तब तक हमें एहतियात से काम लेना होगा ताकि गांव वाले हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी ना कर सके।
1: सारे डरने की कोई बात नहीं, रसूल के आते ही हम तलाक की बात कर लेंगे। और जहां तक गांव वालों की बात है तो कुछ दिन हम नहीं मिलेंगे।
0: हाँ यही ठीक रहेगा।
1: ठीक है सारे, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना।
0: आप भी अपना ख्याल रखना।

0: Assalamualaikum bhai.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bhai.
0: Kya baatein ho rahi thi?
1: Are wo kuch bhi nahi, bas yun hi idhar udhar ki baatein ho rahi thi.
0: Are idhar udhar ki baatein, pata nahi chala kuch. अरे मिल की कोठी में जो हसन भट्ट रहता है ना।
1: अरे हाँ हाँ, पर क्या हुआ हसन भट्ट को?
0: अरे उसकी बेटी जो सारे है ना।
1: हाँ हाँ जानता हूँ उसे, बोलो तो सही।
0: अरे मुश्ताक के साथ उसका चक्कर है।
1: लाहौल विलाव कुवत। अरे मियाँ क्या कह रही हो?
0: अरे सही कह रहा हूँ, वो लोग हसन भट्ट की कोठी में मिलते हैं।
2: सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है भैया,
1: लेकिन सारे का निकाह तो रसूल के साथ हुआ है ना, अब फिर ये।
2: अरे पहले तो उसी मुश्ताक के साथ हुआ था, फिर तलाक हो गया था ना।
0: इसका मतलब है तो रसूल की बीवी ना। फिर एक औरत अपने मर्द की गैर हाजिरी में गैर मर्द से मिले, ये तो उसूल के खिलाफ है।
1: हाँ हाँ भैया बिल्कुल, अरे इससे तो हमारी बहु बेटियाँ भी बिगड़ सकती हैं।
0: हाँ, हमें कुछ करना चाहिए।
1: अरे बेगैरत औरतों को जो मर्द के रहते दूसरे मर्द को देखे, उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए।
2: हाँ लेकिन सारे ऐसा क्यों करेगी?
1: अरे जिस औरत को मर्द की हवस हो वो कुछ भी कर सकती है मियाँ।
2: हाँ लेकिन मुश्ताक उसका पहचान वाला है, उससे मिलने में क्या बुराई है? अरे हो सकता है वो लोग यूं ही मिलते रहते हो।
0: अल्लाह अकबर। अरे मैंने तो सुना है रसूल को धोखा देकर सारा मुश्ताक

0: के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है।
1: अरे तो रसूल कौन सा भला आदमी है, है? कि आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं?
2: अरे मर्द चार चार निकाह करे ये जायज है, हमारे मजहब में इसे जायज बताया गया है। पर औरत के लिए अपने शोहर को छोड़ दूसरे मर्द को छूना भी गुनाह है, और अगर कोई इस पाक असूल को तोड़ता है तो उसे सजा का भागीदार होना ही पड़ेगा।
0: इस मामले में फाता व हसन भट्ट को हम सब लोगों को मिलकर समझाना चाहिए ताकि वो सारे पर लगाम कसे।
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो सारे को पूरे गांव के सामने सजा दी जाएगी ताकि हमारी बहू बेटियां सबक ले सकें।
0: और भाई दूसरे गांव का आदमी हमारे गांव की बेटी के साथ रंग रैलियां मनाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
1: अरे पहले उसके अम्मी और अब्बू से तो बात करो, अगर बात सुलझ जाए तो अच्छी है, अरे बदनामी से तो बचेंगे।
2: हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हम हसन भट्ट और फाता से बात करेंगे। हाँ। नहीं माने तो गांव में पंचायत बुलवाएंगे। एक औरत हमारे मजहब को नकारे ये हम नहीं सहेंगे मियाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ चलो, चलो, चलो, चलो ये नहीं सहेंगे।

0: सुन ली ना अपनी बेटी की दास्तान, सारे गांव में थू थू हो रही है हमारी।
1: पाता, शांत रहो। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं हमारे लिए ये मायने नहीं रखता।
0: तो और क्या करोगे तुम बाप बेटी मिलकर?
1: तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? अरे हमें सोचने तो दो।
0: मेरी बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। सारे अब मुश्ताक से कभी नहीं मिलेगी।
1: सारे और मुश्ताक मिलते हैं या नहीं, अगर मिलते ही हैं तो वो हमारा रिश्तेदार ही है, कोई गैर तो नहीं। और तुम किन लोगों की बातों में आकर ये सब तमाशा कर रही हो?
0: तमाशा? अरे तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा तुम और सारे कर रहे हो। सारा गांव हमारे नाम पर।
2: अब रहने भी दो अम्मी।
0: क्यों रहने दूं? के तू सारे गांव में मुंह काला कर आए इसलिए?
2: मैं मुश्ताक से प्यार करती हूँ।
0: सारे सारे कमबख्त लड़की, बंद कर अपनी जुबान वरना हलक से खींच कर बाहर कर लूंगी। मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरा निकाह रसूल से हुआ है और तू अब मुश्ताक से प्यार करती है? जुबान न काट दूं तेरी।
1: ये क्या कह रही है फाता?
0: मैं जो कह रही हूँ वही सही है।
1: तो क्या गांव वाले सच बोल रहे हैं?
0: नहीं तो क्या झूठ बोलेंगे?
2: ये सच है अबू कि मैं मुश्ताक से मिलती हूँ, पर गांव वाले जैसा कह रहे हैं वो सच नहीं है।
0: हाय, किस्मत फूटी मेरी जो तुझे जना बदनामी करा कर जुबान लड़ाती है।
2: जो बात है वही कह रही हूँ।
1: सारे, अब तेरा निकाह रसूल से हो चुका है और ऐसे में तू रसूल के सिवा किसी और से मेल जोल रखे तो ये हमारे मजहब के खिलाफ है बेटा, और इससे हमारी बदनामी होगी। अगर हो सके तो तू मुश्ताक से ना मिल।
2: मुझे और मुश्ताक को मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
1: सारे, क्या तुझे अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता? अब मैं सारे गांव वालों को क्या जवाब दूं? क्या कहूं मैं उनसे कि मेरी बेटी हमारे सामने हमारे उसूलों को खाक में मिला रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते?
2: अब्बू अब्बू अब्बू, आप परेशान मत होइए, जो होगा उसे मैं संभालूंगी।
0: अरे ना माकूल, तू तो हमें मार कर ही खुश

0: पोती, कौन किसे मार रहा है अम्मी, ये तो खूब जानती है।
1: मुझसे जुबान ना लड़ा, आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं बुरी हूँ और तू जो कर रही है वो सही है।
0: मुश्ताक से तलाक किसने दिलवाया मुझे? मैं आज भी मुश्ताक से प्यार करती हूँ, और जहाँ तक बात रसूल की है तो मुझे बदनामी का कोई डर नहीं। रसूल से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती।
1: कुछ भी हो, अब रसूल तेरा शौहर है।
0: रसूल को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती धकेला गया है, और अम्मी ये सब तेरा किया धरा है। मैं रसूल को शौहर नहीं मानती।
1: अरे एक बार जो रिश्ता बन जाए वो कभी नहीं टूटता।
0: मेरा रिश्ता सिर्फ मुश्ताक से था, है और रहेगा।
2: सारे एक बार और सोच ले बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोच। हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसे जवाब देना होता है, और अगर तू रसूल के रहते मुश्ताक से अपने ताल्लुकात रखती है तो हम क्या जवाब देंगे, बोलो।
0: किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है अब्बू।
1: तुम्हें नहीं है शायद, पर समाज इन रिश्तों को नहीं मानता, और हमें तो जवाब देना ही होगा। हम इस समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ सकते।
0: किस जवाब और किस मर्यादा की बात कर रही है अम्मी? आज जो लोग तुमसे, अप्पू से या मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मुश्ताक से रिश्ता क्यों रखती हो, तो क्या तुम्हारा समाज मेरे सवालों का जवाब देगा कि रसूल से नूरी का तलाक क्यों हुआ? मेरी इच्छा के बगैर रसूल से मेरा निकाह क्यों पढ़वाया गया? मुश्ताक से मेरा तलाक धोखे से क्यों करवाया गया? रसूल जो मेरा शौहर है, वो मुझे छोड़कर शहर में दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात क्यों रखता है?
1: अरे जा, अपनी जुबान न चला। तू औरत है और औरत की मर्यादा में रह। मर्दों की बातों में दखल अंदाजी न दे। औरतों को सवाल पूछने का हक नहीं।
0: जो इंसाफ करते वक्त दोनों तरफ की बातें ना सुने, उनके सामने मुझे दलील देने की कोई जरूरत नहीं है।
2: सहरे, रसूल से तेरा निकाह हुआ है, क्या तू इस रिश्ते को नहीं मानती? क्या तुझे हम पर भरोसा नहीं है? आखिर तू चाहती क्या है बेटा?
0: अबू, मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। रसूल से मेरा निकाह हुआ है, पर रसूल के लिए मैं सिर्फ एक देह हूँ, बीवी नहीं। क्योंकि रसूल के लिए तो औरत सिर्फ एक गुलाम है। मैंने मुश्ताक से प्यार किया था अबू, और आज भी मुश्ताक से ही प्यार करती हूँ।
1: तेरा तलाक हो चुका है।
0: हमारा तलाक एक धोखा था।
1: मजहब तलाक मानता है।
0: मैं उस मजहब को नहीं मानती जो इंसानी रिश्तों को भूल जाए।
1: तू औरत है और तुझसे जो कहा जाए वो ही करेगी।
0: मैं औरत हूँ इसलिए किसी मर्द की जूती बनकर रहूँगी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा से मुश्ताक के साथ रहूँगी, और रसूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा।
1: सारे देख, ये अच्छा ना होगा। तेरा निकाह रसूल से करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, ये शायद तू नहीं जानती।
0: तकलीफ
1: तू ऐसे नहीं मानेगी। रसूल को आने दे, वही समझाएगा तुझे।
0: हाँ हाँ, आने दो रसूल को, मुझे अब डर नहीं है किसी का। अब मैं जान गई हूँ कि औरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करती रही है तू।

0: तो हमें भी उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पहले भी एक बार हम सारे के साथ गलती कर चुके हैं, अब
1: अम्मा तुम चुप रहो। आज तक किसी का भला चाहा है तुमने? तुम्हारी बेटी सारे गांव में मुंह काला किए फिर रही है। शौहर रहते मुश्ताक से मिलती जुलती है और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाय,
0: मैं तरफदारी नहीं कर रहा। अगर सारे चाहती है कि वो मुश्ताक के साथ रहे तो उसे,
1: या खुदा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा और इस घर में तो कभी नहीं। मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी।
2: तो मैं ये घर छोड़ दूंगी।
1: धमकी देती है मुझे अपनी माँ को।
2: अम्मी, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जब कहो तब मैं ये घर छोड़ सकती हूँ।
0: सारे, अंदर जा, हमें सोचने दे कि हम क्या करें।
1: जरा देखो इस बदसात लड़की की हिम्मत तो देखो।
0: सारे, तू अंदर जा। फाता, ये ना समझ कि वो अभी भी बच्ची है, अच्छे बुरे की पहचान है उसे। हमने उसकी जिंदगी में पहले ही जहर खोल रखा है, हमें ही संभालना होगा उसे।
1: या खुदा, तुम बाप बेटी पागल हो गए हो। बेटी की जिद के सामने तुम झुक सकते हो, मैं नहीं।
0: अरे, हमें सारे की खुशी के बारे में सोचना है, उसके भले के लिए सोचना है। समाज अपनी जगह है और वो,
1: और क्या, अपनी बेटी को उस मुश्ताक के पास भेज दोगे क्या? रसूल को क्या जवाब दोगे?
0: आने दो रसूल को, फिर बात करते हैं। अरे, अभी तो तसल्ली से रहना होगा हमें।

0: आ गए रसूल, आओ बैठो यहाँ।
1: फाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: क्या सुन रहा है?
1: सारे के बारे में लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है?
0: अब तुमसे क्या छुपाना बेटा।
1: फाता, साफ साफ कहो, क्या ये सच है?
0: हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मुश्ताक से मिलती रही है।
1: तो तुमने उसे रोका नहीं?
0: रोका था, पर पहले तो मुझे इधर उधर की सुना देती थी, पर जब बात बढ़ गई और पूरे गांव को पता चल गया तो फिर
1: क्या? अरे, ऐसी औरत के हाथ पैर तोड़कर घर में बंद कर देना चाहिए।
0: सही कहते हो रसूल, पर मैं तो लाचार हो गई हूँ। अब तुम आ गए हो तो अब तुम ही संभालो उसे।
1: ठीक है, सारे कहाँ हैं? जरा बुलाओ उसे।
0: घर में ही है, पर बेटा जरा समझा उसे कि इस तरह की हरकत ना करे, और तू भी ध्यान दिया कर उसकी तरफ।
1: ठीक है।
0: औरत को एक बार प्यार से देखेगा ना तो तेरी गुलामी को तैयार हो जाएगी।
1: फाता, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तो पैसे जोड़ता हूँ, अपने मन से खर्च करता हूँ। अरे, सारे जैसी कई लड़कियाँ मेरे जूतों में पड़ी रहती हैं। अरे, वो तो तुम्हारी बातों में आकर निकाह को हाँ कर दी थी, वरना मुझे क्या पड़ी थी सारे से निकाह करने की। पर जब निकाह हो ही गया तो उसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा, और जब मैं नहीं रहता तो तू क्या करती है? अरे, मेरे से इतने पैसे लेती है किस लिए? अरे, तुझसे अपनी बेटी भी नहीं संभलती?
0: अरे समझाया था, समझाया था।

0: पर।
1: अरे तुम पर जितने पैसे खर्चे हैं मैंने, उतने में 10 साराई को अपने साथ घुमा चुका होता, पर तुझ पर तरस आ जाता है सो मन मार लेता हूँ। पर अब पानी सर से ऊंचा जा चुका है, सारे मेरी बीबी है और उसे मेरे कहे पर चलना होगा।
0: हाँ हाँ वही तो मैं समझाती हूँ उसे, पर मेरी सुने तब ना।
1: बुला उसे, मैं समझाता हूँ।
0: सारे
2: आई अम्मी।
1: क्योरी, मेरे जाते ही तेरे चेहरे पर रौनक आ जाती है और मेरे सामने ये मनहूस चेहरा लेकर आ जाती है।
2: हुआ क्या है?
1: जो बात पूरे गांव को पता है, जो बात अभी अभी फाता ने बताई है, क्या वो बात तुझे मालूम नहीं? हाँ बोल, बोलती क्यों नहीं? मैं ही बताता हूँ तुझे।
2: रसूल, तू अब ऐसा नहीं कर सकता।
1: तो तू मुझे समझेगी कि क्या करना है और क्या नहीं है? अभी बताता हूँ तुझे। औरत का मजहब होता है शोहर की सेवा करना, उसके कहे को मानना। अगर मर्द घर से बाहर रहे तो उसका इंतजार करना, और तू तू मेरे ना रहने पर उस मुश्ताक के साथ ऐश करती थी।
0: अरे अरे सारे बेहोश हो गई। अभी छोड़ दे, अब अक्ल ठिकाने आ जाएगी।
3: अरे ये शोर कैसा है? अरे सारे को क्या हुआ है? क्या हुआ सारे बेटा?
1: अरे कुछ नहीं, अब इसकी अक्ल ठिकाने आ गई।
3: सारे उठ मेरी बच्ची, सारे।
0: अरे रहने दो, बड़े बाप बनते हो, तुम्हारी नाक के तले ही हमारी बदनामी करती रही और अब प्यार जता रहे हो।
3: अरे तुम लोगों ने मिलकर मारा है सारे को। फाता तुम माँ नहीं है। सारे बेहोश हो गई और तुम देखती रही।
1: अरे अब तुम भी अपना रोना बंद करो, मेरी बदनामी करेगी तो सारे के साथ ऐसा ही होगा।
3: बंद करो तुम लोग अपनी हैवानियत, अब तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सारे, मैं सारे को अपने साथ कोठी पे ले जा रहा हूँ। सारे उठ, उठ, उठ, चल बेटा।

0: अबू।
1: अरे बेटा, तुम ठीक तो हो?
0: हाँ अबू। अबू, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
1: बेटा, वक्त के हाथों में हम सब कठपुतलियां हैं। वक्त जो करेगा हमें वही देखना है।
0: पर वक्त को बदला तो जा सकता है अब्बू।
1: नहीं मेरी बच्ची, नहीं। वक्त हमारी नियति बनाता है और उसे बदलना नामुमकिन है।
0: तो क्या मुश्ताक से मेरी मुलाकात अब कभी नहीं हो सकेगी?
1: वक्त ने चाहा तो मुश्ताक से कोई अलग नहीं कर सकता तुझे।
0: अब्बू, आप तो मेरे साथ है ना?
1: हाँ सारे बेटे, अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही, मैं तेरे साथ हूँ।
0: रसूल के साथ तलाक हो जाने के बाद ही मैं मुश्ताक के साथ रह सकती हूँ अब्बू।
1: वक्त ने चाह तो ऐसा ही होगा, पर पहले तू ठीक हो जा, उसके बाद सोचा जाएगा।
0: अब्बू, अब्बू, हमें तलाक के बारे में मुश्ताक से बात करनी होगी।
1: तू आराम कर, हम बात कर लेंगे, और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी

0: मुराद जरूर पूरी होगी।
1: अब्बू, मेरी वजह से आपको भी परेशानी हो रही है ना?
0: अरे पगली, औलाद की खुशी तो माँ बाप की खुशी होती है, उसमें तकलीफ कैसे उठानी है? तू ऐसा ना सोच कि तेरी मदद करने में मुझे तकलीफ होगी। तू फिक्र मत कर बेटी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। मुश्ताक तलाक के लिए जरूरी बातें पता कर रहा है।
1: पर अब्बू, क्या रसूल मानेगा?

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की नौवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अकरम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया, हरीश और ललित। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात की। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल एक बैठक के दौरान अधिकारियों एवं खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और खेलों की खबर में सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही साथ प्रसार भारती के ऑफिशियल न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समय है महिला सभा कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं, जुड़ते हैं महिला सभा कार्यक्रम के साथ। और आज के हमारे महिला सभा की कंपियर गुड़िया तिवारी जी भी साथ में हैं, तो सुनते हैं कार्यक्रम महिला सभा।

विद्वान कहते हैं पुरुषार्थ आत्मबल और आध्यात्मिक चेतना का तालमेल जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। व्यक्ति को सदैव पुरुषार्थी रहकर नए विचारों और योजनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान जीवन को सही दिशा देता है, आत्मबल कठिन परिस्थितियों में साहस बनाए रखता है और आध्यात्मिक चेतना इंसान को डर लालच जैसे व्यर्थ के आकर्षण से दूर रखती है। जब व्यक्ति श्रम अनुशासन और एकाग्रता के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे उसके उद्देश्य में सफलता अवश्य मिलती है। तो इसी प्रेरक अनमोल विचार के साथ महिला सभा कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र गुड़िया तिवारी। स्वीकारिए हमारा स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी सुनने वालों को हार्दिक स्वागत है महिला सभा कार्यक्रम में और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए एकदम तैयार होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करते हैं थोड़ी सी बातचीत। आज बिगड़ते पर्यावरणीय वातावरण में हेल्थ से जुड़ी हार्मोनल असंतुलन जैसी अनेक समस्याएं देखने में आ रही हैं और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रही हैं वो है हमारी किशोरी और महिलाएं। किशोरी और महिलाओं में पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या तेजी से बढ़ रही है। केवल मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी समस्या नहीं है ये, बल्कि महिलाओं के संपूर्ण शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये एक हार्मोनल समस्या है जो सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। खराब जीवन शैली, तनाव, अनियमित दिनचर्या, खान पान और शारीरिक गतिविधियों में कमी इसके प्रमुख लक्षण है। पीसीओएस महिलाओं से जुड़ी ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। इस स्थिति में महिलाओं के शरीर में पुरुष हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बनने लगते हैं और अंड उत्सर्जन भी प्रभावित होता है। इस बीमारी का असर केवल प्रजनन क्षमता पर ही नहीं पड़ता बल्कि वजन, त्वचा, बालों, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य में होने वाली कई गंभीर बीमारियों पर भी दिखाई दे सकता है। यदि पीसीओएस के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग भी हो सकते हैं और कुछ सामान्य लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन का अनियमित होना, कई महीनों का अंतराल होना और अधिक ब्लीडिंग होना या फिर कम होना, वजन तेजी से बढ़ना, चेहरे व शरीर पर अनचाहे बाल आना, चेहरे पर मुहासे और स्किन का तेलीय होना भी शामिल है, सिर के बाल पतले होना या अधिक झड़ना, जल्दी थकान महसूस होना, मूड स्विंग और तनाव, प्रेगनेंसी में कठिनाई होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। एक मुख्य बात यह भी है कि कई महिलाओं को लंबे समय तक ये पता ही नहीं चलता कि उनको पीसीओएस है, क्योंकि इसके जो शुरुआती लक्षण है वो सामान्य ही नजर आते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में हार्मोनल असंतुलन, शरीर में पुरुष हार्मोन की मात्रा बढ़ना जिससे ओवरी ठीक तरीके से काम नहीं करते, इंसुलिन रेजिस्टेंस जब शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता तब वजन बढ़ने लगता है और हार्मोन असंतुलन की समस्या हो जाती है। इसका एक कारण अनुवांशिकी भी है। खराब जीवन शैली, जंक फूड, व्यायाम की कमी, देर रात तक जागना आदि इसको और बढ़ाते हैं। इसका समय पर इलाज न किया जाए तो पीसीओएस कई गंभीर डिजीज का कारण भी बन सकता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बांझपन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। पीसीओएस का इलाज जरूरी है और ये व्यक्ति की स्थिति और आदतों पर निर्भर करता है। रोज व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, वजन को कंट्रोल रखें, तनाव से दूर रहें। तनाव कम करने के लिए आप किताबें पढ़ें, अपने जो शौक हैं उनको समय दें, क्रिएटिविटी में खुद को लगाएं और सबसे जरूरी है कि आप पर्याप्त क्वालिटी वाली नींद जरूर लें।

डॉक्टर की सलाह पर आप दवाएं भी ले सकते हैं। सही उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है क्योंकि जागरूकता ही इसका बचाव है। तो ये तो आपसे बात की हमने पीसीओएस पर और उससे जुड़ी जो महिलाओं के लिए हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं, और जैसे कि अभी बात की तनाव कम करने की, तो तनाव कम करने के लिए आपको इंतजार होगा गीत संगीत का। तो आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं फिल्म दीवाना का एक बेहद मधुर गीत जिसे गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने। नदीम शर्मा का संगीत है, समीर की शब्द रचना है। और इस गीत की विशेषताओं की कुछ बात करें तो ये गीत राग चारुकेशी पर आधारित है। राग चारुकेशी वैसे तो दक्षिण भारतीय संगीत का अत्यंत लोकप्रिय राग है। ये भाव प्रधान करुण, भक्ति, शांति और विरह की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इस राग की पॉपुलैरिटी देखिए कि बॉलीवुड में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। कई गीत ऐसे हैं जो आज भी लोकप्रिय हैं, और एक गीत तो आपने खुद भी गुनगुनाया होगा, सांवरे की बंसी पुकारे राधा नाम, हर किसी ने सुना होगा। और

0: सुंदर और स्टाइलिश देखना चाहते हैं और लोगों को लगता है कि फैशनेबल देखने के लिए महंगे कपड़े, ब्रांडेड सामान और ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सही फैशन की समझ, आत्मविश्वास और सादगी के साथ आप बेहद आकर्षक दिख सकते हैं काफी कम बजट में। यदि आपने अपने पहनावे, साफ सफाई, व्यक्तित्व पर ध्यान दें तो कम खर्च में भी प्रभावी लुक दिया जा सकता है। स्टाइलिश दिखने के लिए जरूरी है आप अपने व्यक्तित्व, शरीर के अनुसार कपड़े पहने। हर ड्रेस हर किसी पर अच्छी नहीं लगती, इसलिए इंडिविजुअलिटी का ध्यान रखें। ऐसे कपड़े चुने जो आरामदायक होने के साथ साथ अच्छे भी लगें। ऐसे कपड़े चुने जो बहुत ज्यादा फिटेड या फिर बहुत ज्यादा ढीले ना हो। साधारण लेकिन व्यक्तित्व के अनुसार कपड़े हमेशा अच्छे लगते हैं। फैशन के पीछे सोचे समझे पैसे खर्च करने के बजाय आप ऐसे कपड़े खरीदें जिन्हें कई तरीके से आप पहन सकते हैं। जैसे सादा कुर्ती अलग अलग दुपट्टों के साथ आप पेयर कर सकते हैं, जीन्स के साथ कई प्रकार से एक ही टॉप और साड़ी के साथ अलग अलग ब्लाउज आप पेयर कर सकते हैं। इस तरह से कम बजट में और कम कपड़ों में आप नए लुक बना सकते हैं। कपड़ों के रंगों का चयन भी व्यक्तित्व को निखारता है। हल्के और मिलते जुलते रंग देखने में सुंदर लगते हैं। अपने त्वचा के रंग के अनुसार कपड़े चुनें। ज्यादा चमकीले रंग हर समय अच्छे नहीं लगते। सादगी और संतुलन व्यक्ति को अधिक स्टाइलिश दिखाते हैं। महंगे कपड़ों से ज्यादा जरूरी है साफ और व्यवस्थित रखना। साफ प्रेस किए हुए कपड़े हों, जूते चप्पल साफ हों, बालों को व्यवस्थित तरीके से स्टाइलिश करें, छोटी छोटी एसेसरीज से बढ़ाएं अपना स्टाइलिश लुक। साधारण इयररिंग, ब्रेसलेट, चूड़ियां, ये सब आप उपयोग करके अपने आप को एक नया लुक देकर स्टाइलिश दिखा सकते हैं। तो ये तो आपसे थोड़ी सी बातचीत हुई सौंदर्य टिप्स की। और चलने का समय हो रहा है तो चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे, मुस्कान बिखेरोगे तो दुनिया मुस्कुराएगी, खुशियों की महक हर ओर फैल जाएगी। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन के हर गीत को गुनगुनाते रहो और हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। इसी के साथ अनुमति दें गुड़िया तिवारी को।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं संगीता उपाध्याय। पहले सुनते हैं इनसे ईसुरी चौघड़िया।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। कलाकार हैं नंद कुमार जैन। पहले सुनते हैं इनका गाया ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का। आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

आप सुन रहे हैं आपकी आकाशवाणी, ये प्रसारण हो रहा है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनपढ़ फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना संगीत जयदेव का। इस गीत को हमने लिया हम दोनों फिल्म से।

हम दोनों फिल्में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश, सुनना ना भूलें।

0: मीडियम वेव 180.32 मीटर्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रायसेन जिले की प्रेमा मेहरा ने अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: मैं सन 2017 से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी, मगर आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मैंने अपनी बचत जमा करना सीखा। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन ने मुझे भी काम दिया, मैंने सीआरपी का काम करा। इसके अलावा मैं बैंक सखी का काम भी करती थी और आज मैं प्रधान एनजीओ में बारी ब्लॉक में आजीविका सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी मासिक आय 18,000 रूपए है और मैं खुश होकर कह सकती हूँ कि मैं एक लखपति दीदी हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800

100 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। कल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। हालांकि कार्य परिषद सदस्य डॉ ताहिरा अब्बासी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नाम स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा है और इसे बदला जाना उचित नहीं है। नाम परिवर्तन के लिए अभी विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना और राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। वहीं कल रतलाम 42 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म

0: है। केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैक्कल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। आपकी पसंद का पहला गीत हम लेकर हाजिर हैं हीरो पंती फिल्म से। मुस्तफा जहीद ने इस फिल्म को गाया है। कौशर मुनीर की शब्द रचना, संगीत मुस्तफा जहीद का। सुना चाहा है बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से पत्राया। रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया का।

अगला गीत हमने लिया सत्यमेव जयते फिल्म से। इसे सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी दुबिहा नेवादा गाजीपुर से पतराया प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल का। इसी गीत की फरमाइश भेजी आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। सत्यमेव जयते के इस फिल्म के इस गीत को गाया है जरा के खान ने। तनिष्क बागची का गीत और संगीत है, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना जाए ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साविर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये फरमाइश करता है आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी और करिश्मा गौरी नगर इंदौर से सपना संगीता रोड इंदौर से ही पत्र आया लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया का इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है उदित नारायण और पूर्णिमा का गाया हुआ समीर का लिखा आनंद बख्शी का संगीतबद्ध किया माफ कीजिए आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया हीरो नंबर 1 फिल्म का गीत

गीत संगीत और गायक कलाकार हैं करण औजला। फिल्म का नाम बैड न्यूज़। इस गीत को सुनना चाहा बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा का, फिर शंकरलाल राहुल कुमार सविता स्वाति एवं पूरा माखीजा परिवार। औरंगाबाद से पत्राया राजेश साबले, राजदीप राजेश राशि और शीतल राजेश का।

0: एक लड़की थी दीवानी सी,
1: एक लड़के पे वो मरती थी। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश का मोहब्बतें फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है। सुनना चाहा है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन, आदर्श नगर मलोट पंजाब से पत्राया, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा का। तो आइए आपको सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का मोहब्बतें फिल्म का गाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत तुम मिले फिल्म से है, आवाज है के की। सईद कादरी के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है। सुना चाहा है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से पत्राया, द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेन्द्र कुमार। यहीं से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, सूरज, ज्योति और रियांश का।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रॉड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रूपये का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं आज शाम 5:33 और शाम 6:30 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा 7:21 पर, जिसमें आज आप सुन सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के समय का सदुपयोग, इस पर सामयिक चर्चा। इसके अलावा बुंदेली समाचार और लोकगीत। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा, इसका प्रसारण होगा आज रात 8:00। कुछ और फिल्मी लगभग हम आपको सुनवाएंगे 8:35।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये।

आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: साथियों, आशा की ज्योति जलाएं, निराशा और अंधकार में न डूबे रहें, निरंतर प्रयत्न करते रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। ऐसा मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे। उनके इसी सुविचार के साथ स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शिवांगी तिवारी, और मेरे साथ हैं
1: खुशी करवरिया।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, आप सभी के मनोरंजन के लिए होंगे गीत संगीत और आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली महत्वपूर्ण चर्चा से, जिसका विषय है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज तारीख 4 जून है। कैलेंडर पर तो ये महज तारीख है, लेकिन इंसानी संवेदनाओं के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा है। आज दुनिया भर में आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
0: आज का दिन कोई जश्न मनाने का नहीं, बल्कि ये आत्मनिरीक्षण का दिन है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया भर में जारी युद्ध, हिंसा और आपसी संघर्षों में जो सबसे पहला और सबसे गहरा घाव लगता है, वो हमारे मासूम बच्चों को लगता है।
1: जब हम आक्रामकता या हिंसा की बात करते हैं तो लोग अक्सर सिर्फ युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें सोचने लगते हैं, लेकिन बच्चों के साथ होने वाली यह आक्रामकता सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसमें मानसिक, भावनात्मक और साइबर स्तर पर शामिल होने वाला शोषण भी होता है।
0: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत वर्ष 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान पीड़ित हुए बच्चों के दर्द को देखकर की थी। चाहे वो युद्धग्रस्त इलाके हों या घरों के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा या फिर स्कूलों में होने वाली बुलिंग, हर जगह बच्चे ही सबसे आसान निशाना बनते हैं।
1: और सबसे दुखद बात तो यह है कि जो बच्चे इस हिंसा से बच भी जाते हैं तो उनके मन पर लगे घाव जिंदगी भर नहीं भरते। बचपन में देखी गई हिंसा उनके भविष्य को, उनके सोचने के तरीके को पूरी तरीके से प्रभावित कर देती है। एक डरा हुआ बच्चा कभी भी एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकता।
0: ऐसे में सवाल ये उठा है कि एक आम नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। हम शायद वैश्विक युद्धों को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित बना सकते हैं।
1: इसके लिए हमें कुछ बुनियादी कदम उठाने होंगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अचानक गुमसुम रहने लगा है, चिड़चिड़ा हो गया है, स्कूल जाने से डर रहा है, तो कृपया उससे बात करने की कोशिश करें।
0: अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे बिना किसी डर के अपनी बात रख सके।
1: अगर आप किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या बाल श्रम होते हुए देखते हैं तो मूक दर्शक ना बने रहें। तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित अवश्य करें।
0: बच्चों की मुस्कान ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। आज 4 जून को आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम अपने बच्चों को एक ऐसा आसमान देंगे जहां डर की कोई जगह ना हो, सिर्फ और सिर्फ खुशियां हो।
1: क्योंकि बच्चे कल का भविष्य नहीं बल्कि हमारा आज है। हमारा आज अगर सुरक्षित है तभी कल खूबसूरत हो।
0: तो साथियों, अभी हम बात कर रहे थे आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। कहीं मत जाएगा, रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
0: तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है गुरुवार और आज आता है श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। तो बिना देरी किए खुशी हम ले चलते हैं हमारे श्रोताओं को हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम की ओर।
1: हाँ हाँ बिल्कुल शिवांगी।

0: कौन, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हेलो फ्रेंड, सादर नमस्कार। मैं शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी शारदा जी, और कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
0: जी जी, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विजय पथ है
0: जी।
1: और गीत के बोल है राह में उनसे मुलाकात हो गई।
0: जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं ग्राम व पोस्ट गौना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं। दीदी
0: जी, दीपक जी कैसे हैं आप?
1: बस दीदी बढ़िया हैं, आपके कार्यक्रम ही मध्य प्रदेश के सुन रहे थे तो साहब ने सोचा आज कॉल लगा लिया जाए, तो कॉल भी लगा रहे थे आपको।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या सुनना पसंद करेंगे आज आप?
1: जी दीदी, वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म का सुना देना, परदेसी परदेसी जाना नहीं।
0: वाह दीपक जी, चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार।
1: जी मैं राजू यादव, ग्राम उप्रहका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ, मुस्करा हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से।
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: बहना जी गीत सुनना चाहे थी, मूवी का नाम रहेगा संग्राम। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो।
0: वाह वाह वाह, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: चंद्रभान नाम देव ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरपुर से।
0: जी चंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: हम तो बढ़िया है, आप कैसी हो मैडम?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहे हैं आप?
1: हाँ, आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, युगवाणी, ग्राम सभा, लोक धारा।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है, लगातार आप हमारे आकाशवाणी से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज हम सुनेंगे जानवर कलम का गाना, मौसम की तरह तुम भी तो बदलना जाओगे।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सरोजा यादव बोल रही हूँ, ग्राम भड़ियाई मौजा रसी जिला चित्रकूट से।
0: जी सरोजा जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैं।
0: चलिए, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहे हैं आप?
1: हाँ हाँ।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: युवाणी है, ग्राम सभा है, लोक धारा है, लोक रंग है, दिन मतलब सुबह से शाम तक कार्यक्रम सुनते।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब आपको रेडियो से बड़ा प्रेम है।
1: जी जी मैम।
0: आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: राम तेरी गंगा मैली का है, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा।
0: वाह वाह वाह, चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार दीदी।
0: जी जी नमस्कार
1: दीदी, मैं परमेश्वर सिंह जी बात कर रहा हूँ, ग्राम आनंदगांव जिला जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी।
0: जी जी जी कैसे हैं आप?
1: दीदी हम तो अच्छे हैं दीदी, बहुत हम खेत में हैं अभी दीदी।
0: जी जी आपका कार्य क्या है, क्या कार्य करते हैं, जॉब करते हैं या कोई बिजनेस, क्या
1: नहीं
0: कैसा
1: नहीं
0: है?
1: नहीं हम लोग खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, खेती किसानी का
1: अभी
0: कार्य है।
1: अभी
0: जी
1: खेत
0: तो
1: में अभी गन्ना है, अभी रेशम की खेती भी करते हैं हम, कोस बनाते हैं हम लोग।
0: जी जी जी तो क्या फरमाइश है आज आपकी फिर?
1: दीदी मेरी फरमाइश है, अभी बीबी हो तो ऐसी फिल्म का नाम है,
0: जी जी
1: और गीत के बोल है, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा।
0: जी चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये।

0: हेलो, कौन और कहाँ से बहादुर बात कर रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
0: जी सूर्य प्रताप जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैम हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: चलिए, कैसी चल रही है खेती किसानी?
1: तो धान की तैयारी हो रही है।
0: चलिए, तैयारी चल रही है। तो
1: हाँ
0: आज हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज फिल्म का नाम है खिलौना।
0: खिलौना फिल्म से कौन सा गीत?
1: इसमें एक गाना है, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: जी मैम, धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं श्रीराम रेडियो सीतासंगमणी कला जिला टीकमगढ़ से एसएस पाठक बात कर रहा हूँ।
0: जी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: से है आप? सुना है बड़ी घर की बेटी का,
0: बड़े घर की बेटी। चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: चलिए, कैसी हो रही है खेती किसानी इस वर्ष, कैसी हुई?
1: जी, फसल तो काफी अच्छी हुई थी हमारी, गेहूँ और लहसुन की फसल लगाई थी हमने।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: तो आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: तो मैं बताना चाहूँगा, फिल्म का नाम रहेगा खानदान
0: जी।
1: और गाने के बोले नील गगन के उड़ते बादल।
0: तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, कौन और कहां से बोल रहे हैं आप?
1: हम श्रीराम रेडियो श्रोता संघ मवारी कलान जिला टीगांव से ऐसे पाड़क बोल रहे दीदी।
0: जी जी जी, और कैसे हैं आप?
1: गाना सुनना है, कोई भी गीत सुनवा दीजिए दीदी।
0: ठीक है ठीक है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: तभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम।
1: दोस्तों कहीं मत जाएगा, रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: अंतराल के बाद चलिए दे देते हैं हम आपको आज की रोजगार सूचना।
1: साथियों, UPSSSC योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
0: पद का नाम है यूपी

0: अंतराल के बाद चलिए दे देते हैं हम आपको आज की रोजगार सूचना।
1: साथियों, UPSSSC योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
0: पद का नाम है UPSSSC आबकारी कांस्टेबल।
1: पदों की संख्या है 722।
0: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट भी नियमानुसार दी जाएगी।
1: शैक्षणिक योग्यता UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए और उन्हें भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं प्लस 12वीं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए।
0: आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.uptsssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: तो जाते जाते हम आपको कल के कार्यक्रमों की भी जानकारी दे देते हैं। कल आप सुनेंगे वार्ता रील्स बनाम रियल और हमारा युवा, जिसमें वार्ताकार होंगी अदिति शुक्ला।
1: साथ में होंगी महत्वपूर्ण चर्चाएं और आप सभी के मनोरंजन के लिए होंगे गीत संगीत। इसी के साथ समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपनी मित्र अपनी दोस्त शिवांगी तिवारी
0: और खुशी करवरिया को
1: नमस्कार।
2: अभी युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। श्रोता, अब से बस कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोपाल से प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में आज कलाकार हैं देवी सिंह यादव, इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे महेश कुमार, बैंजो पर होंगे राजा राम विश्वकर्मा और बांसुरी पर मनोज कुमार। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा के कार्यक्रम में सुनेंगे जनउपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बदकाव, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा सुनिए भेंट वार्ता प्रगतिशील कृषक अभिषेक रैकवार से बिरजू भैया की बातचीत। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। रात्रि 8:35 पर आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे आज कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स, रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित होंगे कार्यक्रम। कल सुबह 6:35 पर किसान भाई खेती किसानी के कार्यक्रम में सुनेंगे मुर्गियों का संतुलित आहार। सुबह 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर होगा रविन्द्र साठे का। सुबह 6:50 पर सुनिए कार्यक्रम चिंतन। सुबह 7:20 पर हिंदी महक में सुनिए हिंदी काव्य पाठ विनोद कुमार वर्मा का। सुबह 7:30 पर आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुबह 8:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन, राग होगा मियां की तोड़ी। सुबह 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे गफूर खां और बबली शर्मा। बांसुरी पर साथ देंगे मनोज कुमार, ढोलक पर संगत करेंगे मुन्ना विश्वकर्मा, पैंचो पर राजा राम विश्वकर्मा। सुबह 9:30 पर सुनिए फिल्मी कव्वालियां। सुबह 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर सुनिए गांधी चर्चा, प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। सुबह 10:20 पर सुनिए गैर फिल्मी भजन। सुबह 10:30 पर सुनिएगा फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होंगे कार्यक्रम। दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12 बजे आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1 बजे महिला सभा कार्यक्रम में सुनिए सर्व मंगला रिछारिया की वार्ता वृक्ष हमारे पूज्य। दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसे आकाशवाणी के छत्र

0: नागपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। दिन में 1:45 पर आनंद लीजिए सुगम संगीत का, कलाकार होंगे सतीश भूटानी। दिन में 2 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का और 2:30 पर आपकी फरमाइश। शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी सुनिए, इसमें आप सुनेंगे अदिति शुक्ला की वार्ता रील्स बनाम रियल और हमारा युवा। इसके अलावा रोजगार सूचना। शाम 6 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कल आप आकाशवाणी छतरपुर से सुनेंगे शाम 5:30 पर विश्व पर्यावरण दिवस पर पत्रकारिता से जुड़े संतोष कुमार गंगेले से मरगूम आलम की बातचीत। शाम 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार होंगे बबली शमा और गफूर खान। ढोलक पर संगत करेंगे मुन्ना विश्वकर्मा, बेंचों पर राजाराम विश्वकर्मा और बांसुरी पर मनोज कुमार। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा के कार्यक्रम में सुनेंगे मानस प्रवचन। प्रसंग होगा राजा दशरथ का पुत्रेष्ठि यज्ञ और प्रवचन करता होंगे महेश कुमार अवस्थी। भेंट वार्ता सुनिए पशुपालक अनिरुद्ध सिंह से बिरजू भैया की बातचीत। रात्रि 8 आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। 8:35 पर और 9:30 पर फिल्मी संगीत में आनंद लीजिए फिल्मी नगमों का। रात्रि 10 नाटक सुनिए फिल्मी चक्कर। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन, राग होगा शुद्ध नट। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5:58 होने को है। न्यूज हेडलाइंस थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगी।
1: देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए आकाशवाणी, आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जनजागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रूपये खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। और प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है, है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोता, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की। खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
2: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
2: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
2: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
2: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले

0: बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
0: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते, ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती
0: जी।
1: है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की।

0: ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
1: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
2: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। आ जाओ शाबाश।
3: क्या अभी आपके पास समय होगा?
2: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
1: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
2: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
3: जी वही।
1: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
2: अच्छा।
3: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
2: और
1: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
2: हाँ, बोलो।
3: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही हैं। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
3: 5000 वर्ष पहले?
2: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
1: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
2: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
3: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
2: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
3: अच्छा।
2: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
3: जैसे?
2: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
3: वैदिक समूह?
2: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
3: भरत?
1: भरत नाम तो हमने सुना है।
2: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
3: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
2: हाँ।
3: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारत वर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
3: अच्छा।
2: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
1: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
2: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
3: वो क्या सर?
2: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
1: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
3: भला ऐसा क्यों?
2: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
3: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
3: है ही नहीं?
2: हाँ।
3: ऐसा कैसे?
2: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
3: ओ।
2: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
3: हिंदू।
2: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
3: तो फिर?
2: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
2: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
2: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो तीन ग्रंथ?
3: सर ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
2: अरे वाह, क्या बात है कमल।

0: कर दिया तुमने, बहुत अच्छे।
1: विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं, वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा
0: हाँ।
2: सर आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल,
2: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
2: अच्छा
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
2: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
1: हाँ जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
2: जम्बूद्वीप?
1: हाँ।
2: ये नाम भला क्यों?
1: देखो जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
2: अच्छा
1: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
2: है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
1: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
2: इतने सारे देश?
1: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
2: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
2: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे।
1: चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
2: जी सर।
1: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
2: अच्छा
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
2: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
2: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
2: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
2: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल,
2: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ?
2: और हिंदुस्तान?
1: देखो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
2: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
2: बलूचिस्तान।
1: सही।
2: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
2: सर अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
2: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह क्या बात है।
2: सर आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
2: अच्छा
1: हाँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
2: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
2: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है समझा है उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
2: सबके साथ?
1: हाँ सबके साथ।
3: तो साथियों कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश

0: देश का नाम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
3: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
4: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
5: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
6: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
7: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
6: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
7: हाँ पूछो बेटा।
6: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
7: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
6: लेकिन माँ,
7: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
6: जी,
7: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
6: अच्छा माँ, ये लो माँ।
7: ला।
5: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
6: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
7: क्या मिल गया
6: मुझे? माँ माँ माँ,
7: क्या मिल गया? क्या मिल गया
6: मुझे? मिल गया,
5: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
7: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
6: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
5: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
6: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
7: कुछ भी तो नहीं।
5: कुछ भी नहीं है?
6: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
5: वो तो है मगर
6: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
5: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
6: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
5: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
6: ठीक है, आओ मेरे साथ।
7: अरे सुनो,
6: हम देखते हैं।
7: अरे जोसेफ सुनो तो।

0: उदासी सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
1: अरे गुब्बारा गुब्बारा।

से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में आज कलाकार हैं देवी सिंह यादव। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार। बेंजो पर हैं राजा राम विश्वकर्मा। बांसुरी पर मनोज कुमार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कहरवा के साथ।

अभी आपने सुना कहरवा। आवाज थी देवी सिंह यादव की। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे महेश कुमार, बैंचों पर थे राजा राम विश्वकर्मा, बांसुरी पर थे मनोज कुमार। लीजिए अब सुनिए दादरा।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

अभी आपने सुना विरह गीत। कलाकार थे देवी सिंह यादव, इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे महेश कुमार, बैंजो पर थे राजाराम विश्वकर्मा, बांसुरी पर मनोज कुमार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए अब सुनिए कछियाई।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
5: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण भजन। आवाज थी देवी सिंह यादव की। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे महेश कुमार। बेंजो पर थे राजाराम विश्वकर्मा। बांसुरी पर मनोज कुमार।

अभी आपने सुनी गारी, कलाकार थे देवी सिंह यादव। इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त हुआ। लोकधारा कार्यक्रम में आज कलाकार थे देवी सिंह यादव, इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे महेश कुमार, बैंजो पर थे राजा राम विश्वकर्मा, बांसुरी पर मनोज कुमार।

0: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम आपको बताते हैं गुमशुदा सूचनाएं। पहली सूचना है, नाम है किरण विश्वकर्मा, पिता का नाम राम सिंह, निवासी ग्राम तजपुरा थाना नदीगांव जिला जालौन। इनकी उम्र 17 वर्ष है, हुलिया रंग गोरा, लंबाई 5 फीट 4 इंच, आंख कान नाक कद औसत। इन्होंने कत्थई रंग का टॉप और काले रंग की जीन्स, पैरों में काले रंग की चप्पल पहनी है। जिस किसी को भी इनके बारे में पता चलता है इन नंबर्स पर संपर्क करें। नंबर है 7458065958। एक बार फिर सुने, 7458065958। अगला नंबर है 9936359596, 9936359596। अगली सूचना है, नाम सुशील, पुत्र उधल, पता ग्राम मंगरौट, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, हाल निवासी नया राम नगर उरई, जिला जालौन। रंग सांवला, चेहरा लंबा, बाल लंबे, उम्र 30 वर्ष, लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच, आंख नाक कान सामान्य। जिस किसी को भी इनके बारे में पता चलता है इन नंबर्स पर संपर्क करें। नंबर है 6387948240, 6387948240। अगला नंबर है 7905853848, 7905853848। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल गुजरात और दमन दौरे पर 21,500 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए और इंदौर में 6 जून को भारत, लैटिन अमेरिका और

0: करेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार मौजूद है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
1: I will request all the citizens.
2: मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ऊर्जा की बचत करें और उसका सोच समझकर उपयोग करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए घबराहट में इनकी जरूरत से अधिक खरीदारी या बुकिंग ना करें। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे पीएनजी, इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों और साधनों का भी उपयोग करें।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकलसेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देने के लिए भी कहा है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका देशों के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और आईटी क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से 8 जून तक ईएचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की शुभा खाड़े ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि

0: 7 साल से आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। वर्तमान में मैं बैंक सखी का कार्य कर रही हूँ। तो मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब आजीविका मिशन में जुड़ने के कारण मैंने जो जनरल स्टोर की दुकान खोली है उससे मुझे अच्छी इनकम मिल जाती है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है।
1: मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 8,317 आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 18 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन की 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपना नाम दर्ज कराया है। 8 मिलीमीटर आकार की इन दालों पर सूक्ष्म कला का यह कमाल दीक्षा ने महज एक साल की मेहनत से हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस याद ए बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रख रहे हैं। थोड़ी देर में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देशभर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं को भी सावधान किया है कि मानसून में हवा में नमी के कारण करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है और घर में मजबूत अर्थिंग का होना जरूरी है। अब रुख करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 29 जिलों में आंधी बारिश और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। श्योपुर में सबसे अधिक 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला है और सुबह भी बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज नीमच के ग्राम खेमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय आईटीआई में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 265 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पचमढ़ी के छावनी झील पर सफाई और जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आज किरण बाल गृह कटनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरमालवा जिले के सुसनेर में 5 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब ग्रामीण भाई सुने उनका पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनने वाले सभी भैया ब्रांड खां जमुना भैया की दो यहाँ जुड़ के राम राम पहुंच जावे। भैया रो देखो जो गर्मी को मौसम भी चल रहा है और देखो अब आगे मौसम भी बदलाव ले रहा है अपने में कि देखो हल्की फुल्की मौसम में ऐसी नमी भी आ रही है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और देखो गर्मी के संगे संगे देखो अपने जो पंच भैया आ रहे हैं खेती किसानी के काम में लगे हैं। कैसे कि भैया खेती किसानी के जो जो काम है एक तो जो काम भैया कहूँ पूरा नहीं होते हैं, इनमें अपन जितनी मेहनत करें भैया उतना ही अपन लाभ ले सकते हैं। तो भैया खेती को जो जो काम है अपन खा मन से करने और भैया बड़ी लगन से करने। कैसे के जो अपन काम कर रहे हैं तो उनमें भैया अपन खा लाभ होवे तब ही अपन भैया वो काम कर रहे हैं। और देखो भैया रो आज है 4 जून, तो भैया रो 4 जून खा अपन आक्रामकता का शिकार भाई जैसे जो मासूम बच्चा है भैया उनको अंतर्राष्ट्रीय दिवस अपन मनाऊ थे। ई दिवस का मुख्य उद्देश्य भैया दुनिया भर में शारीरिक मानसिक और जो भावनात्मक शोषण के शिकार हुए वाले बच्चा हैं इनके दर्द के स्वीकार करवे और उनके अधिकारण की रक्षा के लाने जो जागरूकता फैलाऊ थे। ई दिवस की शुरुआत भैया 19 अगस्त 1982 का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लेब नाम युद्ध में फिलिस्तीनी और लेब नाम के जो बच्चन पर भाई हमला के बाद करी गई थी। ई को मुख्य उद्देश्य भैया बच्चन का किसी प्रकार की हिंसा से बचावे और उनके लाने एक सुरक्षित शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करवो है। और भैया देखो बतकाव अपने चल रहे हैं जैसे सुनो गीत गुनो बतकाव कार्यक्रम है। आज जनउपयोगी चर्चाओं और लोकगीतन पर आधारित कंपेयर्स कार्यक्रम है। प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। और भैया अपन बात करें ये अपने जीवन की तो भैया देखो जीवन में हर चीज महत्वपूर्ण होता है। देखो चाहे कोनो काम हो या धंधा व्यापार हो सभी जगह भैया अपनों लगन से काम करें सब जने मन से काम करें यही हमारे सब भैया से कहवो है। और देखो भैया बतकाओ के संगे संगे कछु मनोरंजन भी अपने पंचन को अपन करवा रहे हैं। तो पंचन का अपन सुनवा रहे हैं खेमचंद चौरसिया से जा चेतावनी। तो पंच भैया सुने।

0: अबे अपने भैया बने सुने थे खेमचंद चौरसिया से जा चेतावनी, और आगे अपन बतकाव करें उससे पहले अपन थोड़ी सी रुकत हैं।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: भैया बहनर देखो, अपन अपन बतकाव कर रहे थे अभी अपनी खेती किसानी को, और देखो खेती किसानी की मेहनत की जो अपन बात करें भैया, तो वह बहुत जरूरी है। और मेहनत के संगे संगे देखो अपने बहुत से पंच भैया जो हैं, जो पशु पाले हैं, भेड़ बकरियां पाले हैं, गैया भैंसियां पाले हैं, और देखो बहुत से पशु जो हैं जो दूध देते हैं, दुधारू पशु हैं, उनकी देखरेख भी अपन का बहुत जरूरी है भैया। जोन भैया दुधारू पशु हैं उनकी देख रेख अपन का बहुत जरूरी करने हैं। कैसे के भैया, उनको सबसे पहले तो खान पान को ध्यान रखें, समय पर भैया उनका खान पान रखें और पानी भी समय पर देवें भैया। और दूसरी बात, उनके स्वास्थ्य को भी अपन का बहुत ध्यान रखने है। कैसे के भैया, बहुत से रोग व्याधि हैं जो लग जाते हैं अपने जानवर का, तो उसमें बहुत हानि होता है। तो अपने जो जानवर हैं दुधारू पशु, उनको रोग व्याधि से बचाव करें, और जो अपने नजदीकी जो वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं, जानवर के डॉक्टर होते हैं, उनसे सलाह जरूर लेते रहे कि ऐसे अगर कोई अपन का रोग दुधारू पशु में दिखाई देवे तो उनसे उपचार जरूर करवाएं और उनकी देखरेख करें, उनकी रक्षा करें। तो भैया यही अपनों पंचवीहन से कैबू है। और एक बात और भैया देखो, काहे के जत होगी अपने दुधारू पशु की बात, काहे के बहुत से जो पंच भैया हैं आज क्या करते हैं कि पेड़ पौधा काट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो इसमें भैया देखो अपनों भी ध्यान रखो बहुत जरूरी है। कैसे वातावरण जो दूषित हो रहा है, तो उसे बहुत सी बीमारियां भी अपन का हो रही हैं, और जो बहुत से वाहन को धुआं है, जो सब भैया जो जात है, और जो पेड़ पौधा जो कट रहे हैं, तो उसे अपन का शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, तो इसे अपन का भी गंभीर बीमारियां हो सकते हैं। तो अपन का अपनों भी ध्यान रखना। ऐसा ही अपने बीच में एक बुंदेल सिंह यादव को जो लोकगीत है, तो अपने पंचन का अपन सुन मा रहे हैं।

0: अबे अपने भैया बनाया सुनो गीत गुणवत्त का कार्यक्रम में सुन रहे थे बुंदेल सिंह यादव से जो पर्यावरण गीत। और भैया आगे अपन बतकाव करें उससे पहले अपन थोड़ी सी रुका थे।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
0: भैया बेनरो देखो अगर अपन बात करें अपने घर की अपने आस पड़ोस की मोहल्ला की तो भैया देखो सबसे पहली बात आउट है जल ही जीवन है। जल के बिना भैया कछु नहीं है। कहत नहीं है कि भैया जल ही जीवन है। काहे के भैया देखो बहुत से अपने जो गांव में पंच भैया हैं भैया बहनरे हैं माताएं हैं पानी को दुरुपयोग कर देती हैं। और पानी भैया देखो काहे बहुत अमूल्य है। और पानी की अपन सभी जने बचत बिल्कुल करें। और जो घर को भैया पानी है नहावे धोबी को पानी है

कपड़ा इतना धोबी को पानी है और जो बह जाते हैं और नाला नाली चलू जाते सीधो मोहल्ला से बह रहे है दरवाजे से बह रहे है। तो भैया एक तो सबसे बड़ी बात जा कि जोन जो पानी बह रहा है इसे अपन खा मच्छर मक्खियां पनप रहे हैं उनसे अपना रोग व्याधि भी हो रही है। तो सबसे पहले अपने पंचायत से यही कह है कि जोन जो गंदो पानी बह रहा है इको एक अपन सोखता बना देवे, जैसे घर के बाहर अपन या घर के पीछे जहां भी पानी बह रहा है वो तो एक गड्ढा कर देवे, गड्ढा में भैया देखो ईंट पथरा भी डाल देवे। इसे एक बात जा होते है कि जो पानी गड्ढा में जाते है उसमें एक तो पानी को वाटर लेवल जो है वो बराबर आते वो घटत नहीं है और दूसरी बात गंदगी नहीं फैलत है और गंदगी जब ना हुई तो भैया देखो मच्छर मक्खियां भी ना बैठे और उसे अपन का कोई प्रकार की रोग व्याधि भी ना हुई। तो हमारे सभी भैया बिनन से हैं सबसे ज्यादा माताएं बिनन से कह वो है कि जो घर के कामकाज को पानी बह रहा है तो वो पानी का इस सोखता बनाकर उसमें डाल दें और पानी बाहर बिल्कुल ना बह पावे। और रही बात भैया देखो साफ पानी की तो और बहुत से पंच भैया क्या करते हैं कि पानी बर्बाद भी करते हैं और जो नल है नल की टोंटी अपन ने खोल दी और पानी बह रहा है तो अपनों सभी जन से यही कह वो है कि भैया देखो पानी की बचत करें, पानी अमूल्य है और पानी बिल्कुल व्यर्थ में न बहाएं, जितनी अपन खा जरूरत पड़े उतनों अपन इस्तेमाल करें। उसके बाद भैया देखो नल की टोंटी बंद कर दें या सुनी। और खेती किसानी भी का है बहुत से पंच भैया का करते हैं कि जो ड्राई सीजन चल रहा है कछु कबार लगाए हैं ड्राई कर रहे हैं तो वे क्या करते हैं खड़वा छोड़ देते हैं और पानी खेत में बह रहा है और पानी बह के बर्बाद चलो जा रहा है। तो अपन खा उतनो करने भैया पानी जितनो अपनों फसल में लग जावे और जितने में अपनों ढर जावे उतनो अपन पानी यूज करें उसके बाद अपन पंपन खा बंद कर सकते हैं। और एक बात और भैया देखो आजकल देखो शादी ब्याह भी चल रहे थे और आगे भी शादी ब्याह आए वाले हैं बहुत से पंच भैया क्या करते हैं कि अपने जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं उनको ब्याह कम उम्र में कर देते हैं। तो हमारे सभी भैया बहनों से यही कह कि अपने जो बाल गोपाल हैं जब तक भैया बालिक ना हो जावे शादी लायक ना हो गए उससे पहले अपन बिल्कुल उनको शादी ब्याह ना करें। तो ऐसे ही अपने बीच में देखो एक जय हिंद सिंह के अपन सुनवा रहे हैं जो बाल विवाह गीत। तो पंच भैया सुने।

अभी अपने भैया बहन सुन रहे थे शुणा गीत गुनो बतकाव कार्यक्रम में जय हिंद सिंह से जो बाल विवाह गीत। और भैया देखो आगे अपन बतकाव करें, उससे पहले अपन थोड़ी सो रुकत है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: भैया बेनरुम, देखो अपन पदकावचन कर रहे थे कि जल ही जीवन है, पानी की बचत। भैया पानी की बचत करवो बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि भैया बिन पानी सब सून, पानी बिना भैया कछु नहीं है संसार में। तो ऐसे ही अपने बीच देखो एक लोकगीत है, गौरी शंकर पाठक से अपन सुनवा रहे हैं, तो अपन सुने और अपने पंच भी सुने।
2: जल

0: अभी अपनी भैया बहन है सुनते सुनो गीत गुनो बतकाओ कार्यक्रम में जो गौरीशंकर पाठक को गाओ भाव पानी बचत पे लोकगीत। और भैया देखो अपने बीच में एक ऐसी जानकारी है, प्रगतिशील कृषक अभिषेक रैकवार से बिरजू भैया की बातचीत। तो भैया अपन सुने और अपने भैया बहन सुने।
1: पंचो आज अपने स्टूडियो में है अभिषेक रैकवार जी जो प्रगतिशील कृषक है। आज बहुत नौनी और उम्दा जानकारी देवे जा रहे हैं, खेती के अनुभव के बारे में बता रहे हैं। तो अभिषेक जी राम राम।
2: राम राम।
1: अभिषेक जी सबसे पहला हम अपन से जो जानबो चाहे कि एक अच्छे प्रगतिशील कृषक हो, तो प्रगतिशील कृषक होवे के नाते अपने पास का कितनी जगह है?
2: हमारे पास 3 से 4 एकड़ जगह है।
1: अच्छा, तो रबी की फसल में कौन कौन सी फसल लगाई थी अपन ने?
2: रबी की फसल में अपन ने चना है, गेहूं है, मसूर है और धना है, ये आदि फसल लगाई थी।
1: तो का कैसी रही बार फसल में? अच्छी भाई अपनी?
2: हाँ, फसल तो सही रही है।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: तो किसानी अपन करत हो तो किसानी कौन तरीका से अपन करत हो जिसे अपन का अधिक से अधिक लाभ हुआ थे?
2: तो किलाने पहले तो अपन को अच्छी किस्म को बीज लाना पड़ा है और अच्छे से देख रेख करना पड़े कि पानी की व्यवस्था सही है और जो भी देखना पड़े।

तो मैं पशु वसु ना पड़ पाए जी, जैसे उनको नुकसान न हो पाए किसानी से अपनो। मैं अपन को तार आर की बारी लगाना पड़ा था चारों तरफ से, और सिंचाई के साधन भी अपन को उपलब्ध चाहने ऊपर, और हर 2 साल में अपन को मिट्टी को परीक्षण भी करवाऊं ने के ताकि अपनी फसल अच्छे से अच्छी हो। तो मृदा को परीक्षण भी अगर करवाने हैं तो ओके लाने अपन को समय सीमा देखने हैं कि वो अपनी

0: उनको धूप में नहीं सुखाने हैं, और वो मिट्टी को अच्छी तरीके से मिलाएं, और फिर ऊखों अपन को अच्छे से मिला के, और फिर ऊखों अगर मृदा परीक्षण के लिए अपन को भेजने हैं तो ऊखों अपन को लगभग 500 ग्राम बचा के रखने हैं, उनमें से मिला के फिर 500 ग्राम उनमें से निकालने हैं। तो फिर उनमें अगर अपन को भेजने हैं तो मृदा परीक्षण से तो अपन को पहले तो फायदा है बहुत, जैसे अपने खेत में जैसे हाँ जी तत्व है जैसे नाइट्रोजन पोटास तो की कमी हो रही, और उसे अपनी मृदा को पीएच मान विज्ञात होते।
1: कितनी नौनी उम्दा बात बताई अपन ने कि खेतन की जो माटी है उसको माटी परीक्षण जरूर कराओ चाहिए। कैसे इसे अभिषेक जी अपन सब जाने जानते हैं कि अपने खेतन की माटी में कौन से पोषक तत्व की कमी है बा माटी परीक्षण पूरे करावे से अपन का मालूम पड़ जाता है और उस तत्व की अपन पूर्ति करत है जिसे अपन का फसल की अच्छी उपज मिल जाता है। अभिषेक जी वो एक चीज हम और जो जानबो चाहें जैसे अब चल रहा गर्मी को मौसम तो गर्मी के मौसम में गहरी जुताई के कौन कौन से लाभ हैं?
0: गहरी जुताई से अपन को मट्टी की पलटी हो जाते, इसे फसल में अच्छी पैदावार आते, और इसे मिट्टी के नीचे रोगनाशक अंडे लार्वा के तो वो पलट कर ऊपर आ जाते हैं, जिससे घाव में वो सूख कर खत्म हो जाते हैं, और जिससे फसल में उगरा है फफूंद है जी आदि नहीं लगते हैं, फिर उससे फसल अच्छी होती है अपनी।
1: बिल्कुल सही बात है कि जो माटी में अपने खराब तत्व हैं यानी
0: हाँ
1: वे बाहर आ जाते हैं और वे सूखे खत्म हो जाते हैं तो गहरी जुताई करने के जो सबसे बड़ा लाभ है। संगे संगे सिंचाई के क्या साधन है अपने ते?
0: सिंचाई के लाने अपने पास है कुआ, कुआ से अपन विद्युत मोटर रखे हो के पास में, और डीजल पंप भी है अपने पास जिसे अपन अपनी खेत की सिंचाई कराते हैं। हाँ जहाँ पे जैसे अपने पास लाइट की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे खेत पे अपन पे सोते अपन डीजल पंप की व्यवस्था कर रहे हैं, और जहाँ पे जैसे अपन पे लाइट की व्यवस्था है तो ते अपन विद्युत मोटर का उपयोग कराते हैं।
1: अच्छा।
0: स्प्रिंकलर विधि है, उससे कम पानी से अपनी ज्यादा सिंचाई हो जाती है, उससे अपन की फसल को फायदा है, और उससे पानी का नुकसान भी नहीं है, ज्यादा पानी की बर्बादी नहीं होती है।
1: कितनी नौनी उम्दा बात है कि अपन ने जो सिंचाई के साधन बताए हैं तो इसे स्प्रिंकलर से पहली बात तो जाके पानी की बचत होती है और पौधे से पौधे तक पानी पहुंच जाता है जिसे सिंचाई अच्छे से हो जाता है और पैदावार अच्छी होती है। अभिषेक जी एक बात और हम जो जानबो चाहें जैसे अपनी खेतन में फसल लगी है अगर उनमें कोनो कीट व्याधि को प्रकोप है तो ऊ के लाने अपन का करत हो?
0: उसके लिए हम अपने जैसे अगर देसी उपाय की बात करें तो उसके लिए गौमूत्र है, नीम के पत्ते हैं और मट्ठा है, इनको 20-25 दिन अच्छा मिलाकर रखें, और स्प्रे की सहायता से हम पूरे खेत में इसका छिड़काव करें ताकि हमारे वो कीटनाशक समाप्त हो सके।
1: कितनी अच्छी बात करी है कि अगर कीट व्याधि को प्रकोप है तो अपन जैविक तरीका से उसकी रोकथाम करते हैं। कैसे हैं जैविक तरीका से जोन भैया बहन हरे करत हैं तो देखो पहली बात तो लागत कम आउत है। आजकल अपन देख रहे हैं कि सभी तो नहीं लेकिन कछु भाई कछु किसान भैया हरे दे रासायनिक से रोकथाम करत हैं तो पहली बात तो कि जोन अपनी खेतन की माटी है बा जहरीली हो रही और जोन फसल अपन खा मर रही वो अपन खा रहे तो अपने स्वास्थ्य में तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे। तो अभिषेक जी हमें जान के खुशी भाई कि अपन जैविक तरीका से रोकथाम करत हैं। अंत में चलत चलत हमारे और किसान भैया का अपन का के वो चाहो खेती किसानी के बारे में कि वे कौन तरीका से खेती किसानी करे जिसे उन्हें अधिक से अधिक लाभ होए।
0: हमें अच्छी तरह से खेती करने के लिए जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, और को बीज की अच्छी किस्म का उपयोग करें जिससे खेती में हमें आगे चल के फायदा मिले, और हमें अपनी खेती में रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि रासायनिक पदार्थ का उपयोग करेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए ही हानिकारक है, जिससे हमें वर्मी कंपोस्ट जैसे केचुआ खाद का उपयोग करें खेती में, और जैविक खाद का उपयोग करें, गोबर खाद का उपयोग करें, ताकि हमारी फसल अच्छी तरह तरीके से तैयार हो और हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, जिससे हमारी खेत की

0: टीवी अच्छी रहे और फसल भी अच्छी तरीके से हो। अगर रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल भी रासायनिक पदार्थ से ग्रसित होती है और मिट्टी भी हमारी रासायनिक पदार्थ से खराब हो जाती है।
1: अभिषेक जी, अपन हमारे स्टूडियो में आए और अपन ने अपने खेती के अनुभव के बारे में हमें जानकारी दी, हमारे किसान पंचन का जानकारी दी, इके लाने अपन का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनों, सुनो गीत गुणवत्त का कार्यक्रम में अबे अपने पंचवे सुन रहे थे भेंट वार्ता प्रगतिशील कृषक अभिषेक रैकवार से बिरजू भैया की बातचीत। और भैया बहुत अच्छी बतकाव है इनके और एक एक चीज इनने भैया बताई है, कैसी खेती करने है, कैसे पानी खेती में लगाने हैं, कौन कौन से अपन का लाभ होते हैं। और देखो भैया, अगर अपन बात करें आज की सीख की, तो भैया इको आज की सीख की देखो भी प्रसंग है, जी को दूल्हा पांव प्यादे ऊ की बारात छुट पटैया। तो भैया को साधारण स्वार्थ है अपने जो गांव मोहल्ला पड़ोस में होते हैं, जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं कछु, वे दूसरे के संगे दुर्व्यवहार करते हैं, गलत बात बोलते हैं, लेकिन दूसरे को सम्मान भी नहीं करते हैं, लेकिन अपनो सम्मान चाहते हैं। तो हमारे सभी भैया से यही कह वो है कि भैया दूसरे को निराधन न करें, उनको सम्मान करें, जैसे तैसे व्यवहार करें, वैसे अपन का व्यवहार मिल है। और भैया देखो, आप भूरी चलबी की बेरा तो पंजना कल के कार्यक्रम बता दें, पंच भैया सुने कल के कार्यक्रम में मानस प्रवचन प्रसंग हुई है राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और प्रवचन करता है महेश कुमार अवस्थी और भेंट वार्ता पशुपालन अनिरुद्ध सिंह से बिरजू भैया की बातचीत। तो भैया पतोरों बदका भाव पंचन से मिले आज्ञा, पंचो राम राम।
3: अभी किसान भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा ये कार्यक्रम
1: आकाशवाणी है प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा
2: दिस इज आकाशवाणी इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वीके पॉल फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड डॉक्टर एनके अरोड़ा प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में
4: बहुत-बहुत नमस्कार
3: तो जी कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सबसे पहले डॉक्टर पॉल आपसे जानना चाहती हूं कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है इसके बहुत सारी डायमेंशन है लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे खासकर जो गरीब परिवार है इन दोनों में सुधार लाने के लिए एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मैं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं
3: जी हाँ यह अभूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है डॉक्टर अरोड़ा अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रूपये डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रूपये उसकी जेब से जाते थे आज ये घट करके 35-40 रूपये के बीच में आ गया है ये एक आमूल परिवर्तन है और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है रेडियस है उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
3: जी।
5: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति की

0: लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं।
1: जी,
0: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
2: और उसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शियरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें की कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि अब 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको की एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज

0: परिवारों को बिलोंग करते हैं और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की उसके साथ जोड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। ये इतनी बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी,
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से, और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
0: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा
1: जी।
0: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस

0: डॉक्टर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए। जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर तीन साल में, पांच साल जैसा प्रोटोकॉल है, उसपे तीन कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ईएनटी, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक पीएससी वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में, लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास एएनएम थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतनी संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली बीएससी पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और पीएचसी वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएमसी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग कोई स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी, और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बड़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बड़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना।

0: बहुत बड़ी बात है डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
1: वो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
0: जी,
1: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहले, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप है उसमें, एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में

0: टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशियरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम एआई के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट टू डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phansi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल,

0: इन सब से सभी जुड़े हुए, तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा जो IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सूएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए, तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं, किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र है ये सब जगह सब प्रदेशों में सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

दाग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार साहिर लुधियानवी।

लीजिए अब सुनिए जावेद अख्तर की शब्द रचना जिसे संगीतबद्ध किया है शिवहरि ने सिलसिला फिल्म में, आवाज लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार संध्या थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके

0: आशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
2: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।

0: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म्स से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई

0: घरों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिनसे, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
4: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
5: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है।

0: बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
2: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
1: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Union Home Minister Amit Shah today said the Narendra Modi government entered the era of violence in the Northeast and transformed the region from a hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council or NEC, Mr. Shah in a social media post said today that NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा। तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, जो आदिवासी और जनजाति हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं, इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, जैसा कि बताया हमारे वक्ता ने कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजातीय समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल पे बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15,000 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, एक बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आपकी, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार की पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। लगभग 500 स्कूल आज की डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और

0: हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह के कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी के एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है, और जिससे लगभग 60 करोड़ जो है जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें भी इस सरकार के तहत PM जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिले। और
1: जी
0: पूरे 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए, और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है
1: जी
0: उसको कैसे एक उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके। और उसके तहत हमारा 10 मई से 17 मई तक ये टेक्नोलॉजी इज एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर, मतलब
1: जी
0: विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, उस पे एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए
1: जी
0: तमाम
1: जी जी
0: प्रोग्राम।
1: पांडे जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, उस तरह का ढांचा होता नहीं। तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहां वो है वहीं तक पहुंचाया जा सके?
0: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है, और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना, जिसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने, आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं, और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की, जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप इनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए और लगभग 90 लाख ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए। और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी, और 19,000 आदि सेवा केंद्र जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया, और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं, अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे, स्पेशली ट्राइबल लोगों की।

0: तो ये आदि सेवा के माध्यम से, इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया, तो अगर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 2.75 लाख लोगों को आधार कार्ड में एनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2.25 लाख लोगों को दिया गया, और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल के हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान, जो आपका प्रश्न था
1: जी
0: कि
1: जी
0: डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स के, जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे, जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं,
1: जी
0: उन सबके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है, और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहां पे लगातार देने का प्रयास
1: जी,
0: कर रहे
1: यहाँ
0: हैं।
1: पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है, इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें, तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
0: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं है। तो उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई, ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने, और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलके ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गांव वालों के साथ बैठ के ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिल के कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो उसमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गांवों तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे, और उस 56,000 गांवों में गांव वालों के साथ मिल के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे
1: जी
0: उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, और आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं, जब तक उनकी बात सुन के उन समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से, तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पे कैसे लोगों को जोड़।
1: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
0: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारे क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है, जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को, ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने, मतलब सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट, मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अब पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सकें। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के उस पे, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूट स्किल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग

0: कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने सीएसआर के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए ताकि समाज के हर वर्ग को
1: जी
0: जोड़ा जा सके, तो सीएसआर के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा
1: जी
0: सके।
1: पांडे जी,
0: जी
1: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्य मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर्रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कोहकर बारी कोयलिया हो रामा.
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा. We will now listen a composition titled कोहकर बारी कोयलिया हो रामा.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बात हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यही संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: विद दैट शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन ऑफ मैथिली फोक कॉम्पोजिशंस। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। कॉन्टिन्यूइंग द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली, नाउ वी विल लिसन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी जयपुर ओडिशा।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन। नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं उड़ीसा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्रही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उना, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरु नाही बिका किणा, जीवन हेउ केते पाट बणा, हेउ केते पाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार है गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही। मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अड़प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में है दिल लगा लिया।

आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ उड़िया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्रही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्रही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दीचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर कल सुबह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।